0: ꯀꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥ ꯌꯨꯔꯦꯀꯥ ꯌꯨꯔꯦꯝꯕꯝ ꯏꯔꯣꯡꯕꯝ ꯃꯅꯤꯁꯅꯥ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯇꯔꯥ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯨꯌꯥ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯅꯤꯐꯨ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯅꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯇꯔꯥ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯅꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥ ꯐꯥꯎꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝ ꯆꯤꯡꯂꯣꯟꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜꯗ ꯆꯤꯔꯨ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯖꯧꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯈꯥꯏ ꯃꯥꯔꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯄꯥꯏꯇꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯄꯨꯡ ꯃꯔꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯇꯔꯥ ꯊꯥꯗꯧꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯄꯨꯡ ꯃꯔꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯅꯤꯐꯨ ꯄꯣꯃꯥꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯤ ꯑꯩꯆ ꯕꯥꯎꯂꯨ ꯁꯤꯔꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯄꯨꯡ ꯃꯉꯥ ꯀꯕꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯂꯥꯁ ꯄꯥꯟꯃꯩꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯄꯨꯡ ꯃꯉꯥ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯀꯨꯟ ꯃꯥꯎꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯦ ꯑꯗꯥꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡ ꯇꯔꯨꯛ ꯇꯥꯔꯦ
1: ꯏꯁ ꯑꯥꯀꯥꯁꯋꯥꯅꯤ ꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯔꯦꯗ ꯕꯥꯏ ꯁꯨꯚꯗ꯭ꯔ ꯔꯥꯃꯆꯟꯗ꯭ꯔꯟ Prime Minister Narendra Modi is holding delegation-level talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in Auckland. Both leaders will be reviewing the entire gamut of the bilateral relationship, which has seen significant progress in the last 2 years, especially in the areas of trade and commerce and defence. In his opening remarks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give fresh momentum to ties between the two countries. He said the two countries have now taken a significant step by establishing a strategic partnership which will guide future cooperation. Highlighting the shared democratic values and maritime ties between the two nations, Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
2: मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कल रात्रि को आपका एयरपोर्ट पे आना ये अपने आप में बहुत बड़ा जेस्चर है और मेरी तरफ से मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपके मंत्री से पूरा समय मेरे साथ रहे रात को मेरे लिए खुशी की बात है कि 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और आपने एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है कि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं न्यूजीलैंड के लोगों के बीच आकर उनका भारत के प्रति जो स्नेह है ये देखकर कोई भी व्यक्ति बहुत ही भावुक हो जाता है और मेरे मन को वो छूने वाला है और इसके लिए भी मैं बहुत आपका आभारी हूं

हाउस इताबी रे हाइक्रो सम खिंग बसिंग न सकप नोट आकाश पानी फाल हाउस मुक्ताबी रसी निंगोबम जवाहरलाल खोंबा बासी।

0: रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरे आज नौसेना में शामिल होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
4: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
2: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
4: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
2: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
5: marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
6: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जिस स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं। वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
5: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज्य की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर एक विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थीं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायार मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा। सरकार ने कहा, हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन

0: गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेस्सी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नोस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defence, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1, Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. And now the news in detail. India and New Zealand today signed 5 key memorandums of understanding, MOUs, covering defence, animal husbandry and dairy, tourism, sports and disaster management, marking a new chapter in bilateral ties between the two nations. The deals were inked following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in Auckland. We have more from our correspondent.
3: The two countries signed a memorandum of arrangement between the Ministry of Defence and the New Zealand Defence Force to enhance maritime cooperation aimed at strengthening security in the Indo-Pacific region. The agreement on animal husbandry and dairy will promote research, innovation and exchange of best practices. The tourism pact is expected to boost visitor exchanges and strengthen cooperation in the travel sector. Both sides also adopted a joint action plan on sport to deepen collaboration in sports development and athlete exchanges. An MOU on disaster management will enhance cooperation in disaster preparedness, emergency response and resilience. The 5 agreements reflect the growing India-New Zealand partnership and the shared commitment to expand cooperation across strategic, economic and people-to-people sectors. With Manju Meena's report from Auckland, this is Jigyasa Pandey for Akashwani News.
2: Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give a fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
4: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
2: Speaking on the occasion, the New Zealand Prime Minister described Mr. Modi's visit as a historic milestone, marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. Welcoming Prime Minister Modi, Mr. Luxon said, "It was a pleasure and an honour to host him."

0: नंगसी फन दिलांग हे हो
1: थाबल से नहान तो पोथाद रे थाबल लई सु पोथाद रे अई सु पोथाद रे नसी ये थाबल से लम हे मलिको थोरो येंगो लाओ बा अतिया दन मरो लम थौदोंगी बा थाजगी मिसंग चंगी बा हाइबेदुरा लेसिन नो भाई काका सुने तासन खोमजन खबनो मफोल अमा त उद्रे थवान मिसाब से आंगान सामन खे थोरो ओमा पांदा फमसि लाओ बा
0: ए किट खलनु वनि सोयदा आइ लरिंग आतु पागी केदुगे
1: हजु पुनाइ बाबा मतम लो खत सुनते सिबो आइ तुम दरो यंगलावे सुमांग द सनाराइ न मरोलमा चंद्रमुखी न मरोलमा नाउरिबा
0: नंग सुमखुइ ग लेमिनो नु नुंगान मंगाइ मिनो हा हयिंग खुइ पार खुंगाइ मिनो कु इरांग लांगे वने
1: अदु बुकनागी दमक नो
0: तुमि लेउ तंगे द
1: लेइरो संगों खेरिया कोमला द पुरे इये लाओ नसिगी थाबल खुफासिदि नसिगी प्रकृति गी थविल सिंसिना नुसिरि बसिसु मिङाव ननाबा यामबुआ मक्सिनो नो लारि तुलंग थोखरा फजु पुलाय बाबा मतमलो खेर गासे हिदोक सनि गो कोमला गासे हुन्दो खरा नसिसे हरि उथान मिने
0: खंगी आरि से से से जुताई नंगसु नमारे मैम पुरग कांग सिंग से से छत्र को याव यात्र
1: असियंग न लांग बसु आइ पाम जदि द
0: आइ ने सिदकी सि फाव ब द फागे ब नंग हक ति लांग गु
1: लांग नि आइ दि सुम गांग नि सुम गांग लै दुइ नि
0: नंग अनम कन
1: न फाव ब थोरो उ जसि लाव ब
0: अनम कन र ब नंग अंग ब ने
1: नु थिल नि मिदांग वरम सुपर मारेम ब द फुदि तमांग जोंग सोंग ब दो वरम नि दने ने खेर हो बिरक पनि ता नंग कंपोर नु इंजर कन को कंपोर मनम दुना दा थाबले मनम हा थिनि आइ दि यारो को नंग गि अंगो बुदु इलो चंद्रमुखी सनारेन हेलन गुमसे आइ से अंगो बई ले इसिति नंग गि मरा पाइजर आइ गि दि बरा यार ए माय कंपोर सि मखा द लोले इमालिन हि इंजर निं खब
0: इं बगि इन बई वानि दा आइ कालेन दि इनब्रन
1: हयेंग दी कंपोर्ड मुल्लग तुरिया द पुथर का सुगे लाइकाय वाथोक ओइरग ओय नान सीरग सी खंगनी यबु नदी नंबल रे से के चारो ब आइने ने नंगोन द पिजा ब नंग ना सोम द तंपा सना ग मौपा ग दी लाइ रे न मौपा ग दी न ब मखोय फा नोय रे हाइनी अवे नि नुपासि फनति वाजर पोनि फौबु हुरान दन ताइबने सही यमदा इमा अपंग बिदगी मिंजन सेन परीक्षागी फोम फिलगी पैसा अनिरग अनिरग लंगथो पने
0: नंगोन दगी पु बने
1: अदु बदि काय देदा माने बुया बिरकनि हायर दिबा आइदि आइ लौ फाव ब युन बि गे हायसिन
0: अदु दगी नंग न खंग दसु लाइदिम नि दो
1: अदु यंग न हो न जरगा वायुंग बकि लिकोन दा नंग न हेक फम बगा मान हगत ले ये नुशी बदि यौरब ज मौपा नंग न याम न थाजबा लु न तौजबदुना नंग न बांग ब प्रेतो मेस थु थुगाई दुनो करि
0: या मसी वासि तो सिदा तल्ले
1: अहिं दो लिकोन काई दि खंग दबा आइसु खंबन बना हिं तुम ब यादे खा खुनो गि दि ने नोंगान फाव सानै गयाम बु नुगा लमदाय दुदने माइ खुनो पुदु कयाम नुसि आइने ने मपान दंग हक हंगल लंदा सलमे बा नुगा लमदाय गि थाबल दुदने इसैसे मथांग मथांग सलाइ पुनि गया अंधेरा हुआ उजाला संपा संपा का सुधा का तारा अदगी ने अदगी ने बजुबरागी लता न सकता बसपन की मोहब्बत को दिल सिन सुधा करना गाइ लाई नो आलम दाई दिस ने नंग हलक प्र हलक तो बसु खंग द मिना बा दे हिने यम बुआ नमि तु द ने ना वरम अंगा नो रिने द ने लिको ल म नंग जिंग ब्रा ना वरम सना बदो nangnaga konglau asang wa ma siet laga koi ga hap laga si na ya pagari ma ga si laga ai nak de pam ba do na mi to da ko me am no ba do
0: ai di ko ko re de na na du na ko ai kher ji cha ge
1: sa u nangi da mak ne yambo sangsar si nung si bu angang oiringai dagi haujik phawba sida asigumba thabal kaya kaya harau kumai kaya leisu kaya upalwa pal kaya mathang mathang tha thawa mi sak singje le hauraga ai khoi si si khidawni ko phaja khaba nung si khaba sangsar si hunduk lam laga nung mari sakhidawni ko is khalu badane kai nom ta hoibu
0: khalumda
1: Kanda bangun dia dah. Yambung, kong nang pambi se pazadra. Mana se tabal na yai bada leng leng sat li se. Irang lang na lay li se. Ay koi ni daga yeng bamandra. Tabal ay manam siya mong lae.
0: Lakra po ni, nang munga hondagi.
1: Nang di, suk yeng yeng di. Sing sang paring ga se, dumin, dumin, wakan kal laga dum bamandra. Yeng ni?
0: I did 2 minutes in Tori.
1: As it took me at the
0: party, 2 minutes. Do say, Sour Nova. I in the Buru, he can hang on together.
1: Nun, I bet a boo, any other bagari lake.
0: Late
1: Yamboa, I see the Arapa Mangasi.
0: Canada no, no, I see.
1: No wonder.
0: No wonder.
1: I say, now don't observe. I now crept in here, Ningam Zahuru go.
0: No, Zahuda. Ai kari sunung am da bto biro ta bu sunung se khare di nga wi do
1: kan ha de no kan ha gi da mak no
0: na ni sigum gi wari se la na be ta ho da ba sum ne sum ne sum wari sa si nu si ne se ke do ge nang ma kha ta ra nu ko
1: ta ra ka ni
0: ha nang se sak ta bu khare thi ba gi wa ni thung ba thak ba khop de ai ne khir se ba mu na ho bu de gi nang ne mane ho bu ne he le
1: ado punchi supana na ta lai duna thongbi ge di yaning di ne
0: masak phaje bi cha insang thong ba kaya hai ta baduga lai min nani ba
1: hai su ham ni yam bu nang na dum ne ya sum khalla di nu ma di akhoi ni kai na ni ko sum hai na ga phamin na ra ga phamin na ri se phang ta ba su ya ye ba sum u khi da ba kaina ba ka du o ra ka du ni ko
0: ma san ta ni kai no punchi ne Unda bagai nampak hasil di nang aigi wad nanti.
1: Madu yaning dia bu, yang bu, nang bagai nampak sokong mui. Bagai nampak kalu pada ni. Isase, bagai nom tau. Yang bu, aku ini semua ni semua isi ba. Aku yang balal, nang aku yang balal no ba. Nang naga nubi yang mati dia gai dana semua ni tabel dega paman ba. Mana tuong ba nung hau naga sak ba? Ay nga mo, ay si kiba na pay.
0: Nanggi kere si ukti hai.
1: Wapu pa ni mita hubi kede, aduga zagoy rasi yung si ko.
0: Nang tuong ta ko si, ayin nanam mahay ka dira, nanam si do, nang kar tabi ko.
1: Tambi ba di lare dana ne, huu hap chil laga nakoy ni ma hato ke. Duga ay su si zaki ke.
0: Pagi na tini. Nanggi apa bukan nani delay ne?
1: Kariya.
0: Aman na thong batak pa. Aman na ay nangang bata saw daba.
1: Saw ba matang laki dori pani de yambo? Saw kibe na mitu dagi di ne loy. Ado bu punsi super saw ba nangga daba di mande. Ado ka yambo su ay ngon dadi saw deko. Nong ngan ba phaw ba sum pham si ko khwai da gi wa ba wari su li bi yo khwai da gi nong ngai ba wari su li bi yo ba yam pu
0: fa se bia ai nga si di nong da ke do ma hai ke i seng seng na ni ko nang ne ai gi wa khal su khan khalu no
1: khan ni na thau lai te
0: are ma da ma ta ma nge nang i thamu do lai man oi na ba ni
1: a hal sing na lai ning ba bu ma ta mang ba kaung na bro ไอ้ดิเน่นางบุญนุ่งสีนาบานางบุญนิ่งเนี่ยนะบ่อยนะปกหลักระบายมาปกเน่ทำไว้เซ่ไล่มันไว้จะสนุปุ่นสีเซ่เก็บจะสนุ
0: พาร์ตโต้ไอ้กิจหายดิฉันเนี่ยไอ้คนนี้อุณหภูมิสิสุนนะอุณหภูมิกงนับดีไอ้สมัยนับพัมบาตัวโรคขนาดนับหายไปเซ่ 미나 허이 낭부디 낭수니 가수나타바드 밍세티니 미니 티는 낭나니고 낭수 앙앙나티 아이수 앙앙나티 미기 미잉드 게암 참거도리노 아이나 하이리시네 아이기 와클 타도 아이 와석던 하이리시네 낭가 이거 수 오이 오이나로 담파스나나 아이부 눙시다바야이 아이 마부 로우다바야이 아두 아이 낭부수 로우로 아이나 하이리시 시행하바니 아이나 하이리시 아로이바니 시대기 막하다 안나라바디 낭나 아이 사오부 우디 하이바세 우럭바야이 탱해 자로 아이 착하게 아이 하이리시 낭 사오노
1: 사오디 사오팜수 톡디 아이 수강이 야문 라이브 숙능농시비디 하이바 아이코니 분시시다 우이로이수 아이부수 미나 티는 강래 아두부 아이 로이메 카게 아이게 아소이베말레 분노막세 칸나파오 칸게누야다 탑독방감다바세네 파레
0: 사크르게 낭수 사크로
1: 아이 숨레이니 네 인콜시다기네 아이게 술라우로이
0: 아둠 가얌 꾸이노 밤도이노
1: 삽도 비나모 네 올로 하이다나 नोने खेल साबगी बुखम सिने नंगना फमन मोरा सिने अकोय हुमने नुदुम मोनना जुकया कया म फमचि द सुमले जाहुरकि
0: हाय चने
1: हे था थवान मिस अ हे हतिया फसेले ब माले हे थाबले हे तुमले मुकि हुजिते कोई पुले सुरे म तोइने लेरम बता ए बुदी सुर कायल आई की पुंसी की लाइनिंग ओई जब खोई देगे नुंसी जब महा की वहाई कयान आई की थमोई बोल लाग थोबे आई भी हो नको ने हम तक भी हो लंबी है मत दे
0: नुमित्तु देगे आई माबु सुंगु उखे दरे महा युम न पावले इतरा पोई खलुई मादी आई उदन बलोर पर जाने आई जो था खरे ले रगा आगरा दे एमे तम मसल है आई ने एमे लो रगा मफम से ले रगा पाजी सु आई की नाक ते लेना ना भाई देना नोंग म पाजी लो बा सत पता इथा था जतना महक लाए
2: Yambung
0: letro. Yambung. Eh, Pajabira. Jago. Nang kam dawri.
1: Nungai ba pao ma tamge dana lak pani da yapung da. Yambung su college da waza wa re tai. Yam nungai re. Baji su Imphal da leidor ma le ko.
0: Ada I ga lebin ro ge.
1: Swai da leiba budi ada leiba na yam phai da. Ai ko wa di nungai ro ai sima ngai re.
0: Hoi ne. Nungai re ge ne. Ai nungai bu pau tam gi hai bu kai no.
1: Ai lu hong dau le.
0: Ha. Kari lam da kana da.
1: Ai na khoi da gi mu si da ba pam je da ba nu pa du da.
0: O. Du kari gi no.
1: Ya mu na hai bi ba du ni. Mai ma ta nai bu kana na pam bi du no.
0: Pa pa re ne.
1: Pa ba gi wa bu di na te da. I know me and a bonu she to put up a soup wabba, a soup unite up, a soup ikaiba number say. Mahak so can you sulate the beep? Me couldn't even let my pump would be, not my pump would be. Sub TV aged a mahak nut, I couldn't warm the double dog, color a gub. United the buggy one. Punsi say, Mahan crassida, highness, color a penny.
0: Punsi will Mahan by say, bang the buggy one. Nang hau jik khan liba to madu asumma phirem ne.
1: Nang onda so wai sang e. Iki ki ba ma laiba tu laitre da.
0: Hera, adu wadi. Aik kari paang oi ge.
1: Yam, hara obra.
0: Nang si su. Paang o hai ba amadi.
1: Paang bagi wabu di. Yam bung lang amdu na aik idamak. Sangsaar gil lam tum pung namak. Pembi itu masuk, ayam pinggir dapat. Kalau lepas pembi itu masuk, ayam pinggir itu dapat. 양보, 아이 나이 밤에 비방한 거다.
0: 남가다 보고 어렵디 아이 남가니.
1: 남가다 보디 마한테. 아두 보. 남바라 양비야.
0: 하유네.
1: 본시시다 남나 가야 양비크래. 가야 가렴나 비크래. 가야락 마티바 비크래. 아두 보. 아이 너무 어떤 성민 기대 아호이는 아좀 눈시기 나시기 아로베 님이시다 낭부분 시숙받아 가오봉 없나봐 나트라가서 성민바 와이 그러디 아이비요 나트라바디 아이 미기 미기보다
0: 마도 마도 오이 톡대다 낭기 뽕민기 타모이기 와니 살자비
1: 하이비다바 야로 바래, 남비드라바니나 가리금바 마땅디니자게
0: 바자비, 미 과이동을 좀내 좀 나가는 시기다오게.
1: 가리야 가이베 야오르게.
0: 아이 하이펑 강디 바자비.
1: 아이는 니자가 다베세, 야함나 삼바사니다. 분치수빠 낭보 가우자다나, 낭기 바자바부 강자나, 마시기 아숨나 아숨행한디.
0: 마도 빠니. 노록도 따가다 보아네 마도.
1: 아이니 힘리바 마 폭시다. 얌봉기니 하이바 아이나 까리군바 마다 따봉 암키데. 냄송은 속나타기 얌봉도 예사키 변했다나. 하영 시라가 농기다 막 노록 따바디 다자사노. 마시디 카르몽기고 얌봉 본시기야로가 하이바도 마시시네. 누가 아이나 갈라바키 하이베도 갈라바 하이베도 오이니코 오이니코 야모
0: 마시푼시네 아이나 수헥 하이베도
1: 푼시세 칸바디 와이코 칸데 야몽다데 야모 아이나 루홍키바 Mangsul hong kiba, punsigi loira baniko. Adubu masi ay konigi punsigi tangkak ama uhensi. Amuk tangkak ama laksa. Nangga iroyna na, nangga iroyna bawari uaira batine. Ay, ngasi wari basita gihena saruk lising lising suwasa.
0: Mado, nungay po uina laksa nuta. Lakpa taragadi. Pazibi. Ai semua sih di punggung saya yang menawi. Ai nanggung sih dapat di nanti. Kena. Nanggi nasi om do. Ngasih dia ilah orang kes. Masih naik kita mau ida. Nanggi bapa mama pun sih super delation.
1: Masih sih bo. Karena mana miki, karena mami kup. Untuk mengenai dapat. Pencara bermikup sama hai betul, ingon datung.
0: Hau kibar lan kibar, ayin ngang kibar kaya, Pajabi, nang ayin buka rugan ko.
1: Matudi, ayin hai katapane. Yambo, ayin gimit kipisi, punsigin nang onda uhaloy kanban.
0: Aduna, Pajabi na, mupi masadu gi mama na, aibu sauning kibaga, isana lari wat baga, kaiduk na ninggadra, hai bagi wani da.
2: Oh, adu di, yamna lari bama lari, na jomga do, pura gacat piro.
0: Hey, pagi ya wana ti ne. Ihe, aisyu ne, angang sing nuna kada edil lai, kuat meriaz ke taurubra kana ngongde. Matha si sadu rida. Nu mengalami ini, hidup pasat kedapasih.

आकाशवाणी इम्फाल आर के गोरानी पाव पाजरी अहानबदा मरुवेब पाव मुख्यमंत्री योनाम खेमचान ओलंपिक पार्क लेब सिट्स कॉम्प्लेक्स उनिंथ उयोग हौदोखरे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अखनब सेंपुब रेल गारी अमांगसी जिरीबामदगी तमिलनाडु जिला की खोंसांग रेलवे स्टेशन तमना लाखरे भारत अमुसु न्यूजीलैंड हंगाक्सेल डिजास्टर मैनेजमेंट एनिमल हस्बेंडरी यौना तोंगान तोंगानबा ललुन इथिकिलम द यानेसे मंगा सही तौनखरे अमसुंग वेनेजुएला ममंग थादा थांना थानाना युहार हाखिबादुदा सिखिबे मिगी मसिंग लिसिंग मरी हेनखरे मुख्यमंत्री जुमनाम खेमचान ओलंपिक पार्क लेब सिट्स कॉम्प्लेक्स उनिंथ उयोग हौदोखरे थरम सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट

0: ꯑꯦꯗꯤꯇꯔꯁ ꯒꯤꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯦꯗꯤꯇꯔꯁ ꯒꯤꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯦꯗꯤꯇꯔꯁ ꯒꯤꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯗꯦꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯀꯪꯂꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯂꯤꯝꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯔꯥꯏꯖ꯭ꯌꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟ ꯁꯤꯡ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯦꯜꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯀꯪꯂꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯐ꯭ꯔꯟꯇꯤꯌꯔ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯕꯥ 92ꯒꯤ ꯆꯦꯟꯕ ꯄꯨꯕ ꯔꯦꯜ ꯒꯥꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯒꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯥꯔ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯏꯁꯇꯦꯁꯟ ꯇꯝꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯉꯥꯇꯦꯝ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠꯅ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯗꯕꯥ 92 ꯌꯥꯎꯕ ꯔꯦꯜ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯥꯏꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯆꯦꯡ ꯕꯦꯛ 50,000 ꯔꯣꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯂꯝꯕꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 93ꯇ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯆꯪꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯄꯨꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯀꯟꯚꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯟꯚꯣꯏꯗ ꯒꯥꯔꯤ 150 ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯜ ꯄꯤ ꯖꯤ ꯄꯨꯕ ꯒꯥꯔꯤ 16, ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ 55, ꯗꯤꯖꯜ 17, ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯄꯨꯕ ꯒꯥꯔꯤ 3, ꯑꯂꯨ ꯄꯨꯕ ꯒꯥꯔꯤ 4 ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯄꯨꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯀꯟꯚꯣꯏꯗ ꯁꯤꯃꯦꯟꯠ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯍꯥꯔ ꯌꯦꯟ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯄꯨꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯄꯨꯕ ꯒꯥꯔꯤ 150 ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯝꯅ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯛ 198 ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 6ꯇ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯪ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯦꯝꯕꯨ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯄꯥꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯕꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯐ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯇꯤꯝꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯥꯛꯁꯟꯅ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅ꯭ꯌꯨꯖꯤꯂꯦꯟꯅ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯍꯁꯕꯦꯟꯗꯔꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯌꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯉꯥꯅ ꯁꯍꯤ ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯨꯈꯠꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯟꯅꯈꯤ ꯌꯥꯟ ꯑꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯖꯤꯂꯦꯟ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯣꯐꯔ ꯂꯛꯁꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯍꯤ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅ꯯�ꯌꯨꯖꯤꯂꯦꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯂꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯁꯍꯤ ꯇꯧꯅꯈꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ 2030 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯗ ꯆꯥꯝꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ
1: ꯑꯥꯖ ꯍꯝꯅꯦ ꯏꯟꯗꯣ ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯃꯦ ꯃꯦꯔꯤꯇꯥꯏꯝ ꯀꯣ�ꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯀꯦ ꯂꯤꯌꯦ ꯑꯦꯛ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯔꯛ ꯄꯔ ꯁꯍꯃꯇꯤ ꯕꯅꯥꯏ ꯍꯦ ꯕꯥꯏꯂꯦꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯅꯦꯚ꯲ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯂꯣꯖꯤꯁꯇꯤꯛ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯣꯔ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯃꯦ ꯁꯍꯌꯣꯒ ꯁꯦ ꯍꯃꯥꯔꯥ ꯑꯥꯄꯁꯤ ꯇꯥꯜꯃꯦꯜ ꯕꯙꯦꯒꯥ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯍꯃꯥꯔꯦ ꯁꯝꯕꯟꯗꯣ ꯀꯤ ꯁꯕꯁꯦ ꯃꯖꯕꯨꯠ ꯇꯥꯀꯠ ꯍꯃꯥꯔꯦ ꯄꯤꯄꯜ ꯇꯨ ꯄꯤꯄꯜ ꯇꯥꯏꯁ ꯍꯦ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌ ꯁꯃꯨꯗꯥꯏ ꯀꯦ ꯂꯣꯒꯣꯅꯦ ꯑꯄꯅꯦ ꯄꯔꯤꯁ꯭ꯔꯝ ꯑꯣꯔ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠ ꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯖꯤꯂꯦꯟꯗ ꯃꯦ ꯕꯤꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯊꯥꯟ ꯕꯅꯥꯌꯥ ꯍꯦ ꯎꯟꯀꯤ ꯗꯦꯈꯔꯦꯈ ꯀꯦ ꯂꯤꯌꯦ ਮ�ꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯅ꯭ꯌꯨꯖꯤꯂꯦꯟꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯔ ꯅ꯭ꯌꯨꯖꯤꯂꯦꯟꯗ ꯀꯦ ꯂꯣꯒꯣ ꯀꯥ ꯑꯥꯚꯥꯔ ꯕꯦꯛꯇ ꯀꯔꯇꯥ
0: ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯅ ꯆꯍꯤ 90ꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯖꯤꯂꯦꯟꯗ ꯆꯠꯄ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯅꯕ ꯄꯥꯏꯈꯠ ꯄꯥꯏꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯈꯤꯒꯅꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯔꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯔꯠ ꯁꯤꯞꯄꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯋꯥꯇꯔ ꯋꯦꯁ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯔꯕꯥꯅꯟ ꯁꯣꯅꯣꯋꯥꯜ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯁꯥꯍꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯐꯪꯂꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡ ꯈꯛꯇꯅ ꯍꯤꯗꯥꯡꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝ ꯇꯧꯍꯟꯒꯅꯤ ꯄꯣꯔꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯍꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯥꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯏꯁꯔꯣꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯅꯕꯃꯤꯇ꯭ꯔ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯁꯨ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ केनिंगाक्सेल मित्र राजनाथ सिंह भारत साजब स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी इंडिया नेवी ईस्टर्न फ्लीट कमीशन तौरे फ्रिगेट अंगाक्सेल मंत्रालय की प्रोजेक्ट 17A की मखा साब तरुकसुब लान की जहाज ने आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम जहाज अ कमीशन तब की थरम श्री राजनाथ सिंह भारत अंगाक्सेल की लम नोम नोम की खुम या चंसी अतोप लेबागे तेंबांग लान की जहाज साबद मालेंगे मकोक थो लेबागद भारत सुबली महेंद्र गिरी भारत महासागर की अकोब लेबागद शांति थम अचौब थौदांग लौगनी महेंद्र गिरी जहाज अ इंडिया नेवी की वारशिप डिजाइन ब्यूरो डिजाइन तब मुंबई मजाको डॉक शिप बेडर्स लिमिटेड साबने जहाज अद एंटी एयर एंटी सरफेस एंटी ऑपरेशन तब शक्ति मसीद नतन सेक्यूरीटी पेट्रोल सर्च एंड रेस्क्यू मिशन मौसा की खुदोंथिब लापनबाए बेनून जिला ममांग था कुमरीद थना युहार हाकी थोदी मसिंग लिंग मरी हेले बेनून जिला की पार्लियामेंट चीफ होस रोड्रीगेस रिक्टर स्केल तरह दशमिक अनी तरह दशमिक मंगा यौन हाकी युहार अद लिंग मरीग चाम तरानीपन यौरे मई लिंग तरहतुक चात्र निफुना अशोक अपन नंखी लेबक अद समुद्र खोमान जिला ला गुरा युहार हाब अद चौना थोहनखीबनी अमरोम लेबक अब थोद अव अना तेमानगद इंडियन एयरफोर्स की सी 17 ग्लोब मास्टर 3 एयरक्राफ्ट अनी भारत लाइनमी की 60 पेरा फील्ड हॉस्पिटल यूनिट की मई निफु मतो साब कंटीजें बेनून जिला थारखीबद बेनून जिला की एक्टिंग प्रेसीडेंट डेलसी रोड्रिग्स भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थागप फोदरली फीफा वर्ल्ड कप के अनीसुब क्वार्टर फाइनल मैच की हौकीब अहि नुया पुखा चेप सब मैच स्पेन बेल्जियम पांजिल अनी थोखरे लोनना स्पेन वर्ल्ड कप की सेमी फाइनल चंग अनीसुब टीम ओरे फ्रांस की हाना सेमी फाइनल चंख्रबनी अहमसुब क्वार्टर फाइनल मैच हय नोर्वे इंग्लैंड मरीसुब क्वार्टर फाइनल अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड सानगनी सेमी फाइनल मैच थास की तरह मंगा तरह तरह सानगनी फाइनल थास की कुंद सानगनी केंद्र मपाल थरम मंत्री डॉक्टर ए जे शंकर नगर ओमान की मपाल थरम मंत्री वादर बिन हमद के उनदुना गल्फ लमदम शांति तंगदू लेता फीब हंजन वफम क्या खनख्रे उनबा लेबाक अनी तोगा तोगाम हिरम तेंमा पीने वफमसु मपुंग खनखी सोशल मीडिया थागरप वारोलम डॉक्टर जयशंकर खनब मपुंग ललोन इटिक सेल थादब मेरी टाइम टेक्नोलॉजी गाकसेल साइबर सेक्यूरीटी चिंब की वफम यावरी उनब ओमान की मपाल थरम मंत्री भारत ओमान लेबाक अनी चा क्या मरुमपा मरी थमन लाली मरी अ तुमकोक मखा चथकीगनी अरयद मरुब पाव हना मुख्यमंत्री युनाम खेमचान ओलंपिक पार्क सेट्स कॉम्प्लेक्स उनिंग उयोग होदोखे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटर रेलवे की अखनब चेंपुब गाड़ी रेल गाड़ी जिरीबाम तेमलों जिले खोंसा रेलवे स्टेशन तम लाख्रे भारत न्यूजीलैंड डिजास्टर मैनेजमेंट एनिमल हस्बेंडरी यौन तोान तोान ललोन इटिक लम यानी से मा सही तौनख्रे बेनिन जुएलाद ममंग था थना थना युहार हाखीब मीसी मरी हेंख्रे पाव लुजरे
2: अदोम थौरम ताबिरिबासि आकाशवाणी इम्फाल की कंगला चैनल दगिने आकाशवाणी इम्फाल हौजिक पुंफम असिद लांथोक्चरी तोंगान तोंगान बा सैसकप सैसकपि सिंगी खोंजेल दगि मणिपुरी मतमि सैसिंग खुदोल गि अहानबद तामिनासि थोंग्राम लक्ष्मी गि खोंजेल दा ngairang ba munindro na sairing ba chikla ba chingya gi pamel makha da asum na sai hoba matami sai khudol dau jari

0: ꯃꯔꯨꯞꯀ ꯄꯨꯟꯗꯨꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯚꯔꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯤꯕ ꯉꯝꯂꯝꯗꯦ꯫ ꯀꯥꯏꯅꯊꯪꯗ ꯑꯦꯟꯖꯦꯜ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯔ ꯀꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯂꯥꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯍꯤ 17 ꯇꯉꯥꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯁꯤꯏꯑꯣ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯂꯥꯛꯂꯕꯗ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯏꯪ 1949 ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯖꯤꯞꯇꯨ ꯀꯣꯝꯄꯦꯛ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯅ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯗꯣꯂꯔ 600 ꯂꯩꯈꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯌꯔ ꯈꯔ ꯐꯪꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯤꯟꯊꯗꯅ ꯆꯍꯤꯁꯤꯃꯛꯇꯗ X.com ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯃꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯦꯡꯀꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯟꯐꯤꯅꯤꯇꯤ ꯀꯧꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯒ ꯄꯨꯟꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯦꯄꯥꯜ ꯁꯦꯝꯈꯤ꯫ ꯏꯪ 2002 ꯏꯕꯦꯅ ꯄꯦꯄꯥꯜꯕꯨ ꯗꯣꯂꯔ ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ 1.5 ꯂꯩꯈꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯗꯣꯂꯔ 145 ꯐꯪꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯛ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅꯈꯛ ꯂꯩꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯥꯔꯁꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯨ ꯈꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯂꯝꯃꯤ꯫
1: ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ, ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯏꯂꯣꯟ ꯃꯁꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ, ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ 2:15 ꯆꯠꯂꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯗꯣꯄꯦꯍꯔ ꯁꯃꯥꯆꯥꯔ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ꯫
2: भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया, कहा भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
3: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
2: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
4: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
4: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
4: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
4: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
2: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
4: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
2: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
5: आईएनएस महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
2: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
6: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
7: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय में शामिल सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
2: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानसप्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
2: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड

ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में एक विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट एक रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार फौजी भाइयों, ये है आकाशवाणी फाल केंद्र का कंगला चैनल मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फौजी भाइयों की सेवा में फिल्म संगीत।

फौज भाई, अब सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम के पहले पायदान पर अलका याग्निक और अरिजीत सिंह के युगल स्वर में तमाशा फिल्म से ये गीत। बोल इशाद कामिल के हैं और संगीत AR रहमान का।

फौज भाई अब सुनते हैं किस्मत कनेक्शन फिल्म से ये गीत आतिफ असलम और अलका याग्निक के युगल स्वर में। बोल सैयद कादरी के हैं और संगीत प्रीतम का।

फौज भाई अगला गीत है विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म आई हेट लव स्टोरी से। आवाजें दी हैं शफाकत अमानत अली और सुनिधि चौहान ने, बोल विशाल डडलानी के हैं।

फौजी भाई आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के कांगला चैनल से फिल्म संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं राहत फतेह अली खान की आवाज़ में लव आजकल से ये गीत। बोल इरशाद कामिल के हैं और संगीत प्रीतम का।

फौज भाई कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में हमारी अधूरी कहानी फिल्म से। बोल रेशमी सिंह और विराग मिश्रा के हैं, संगीत जीत गांगुली का।

फौज भाई सी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: social media influencer maibam social club amadi khullamasung kangluki lusingba kaya ga su lamdam sida nungsi sanaba amasung miyam amadi security force ki marakta phabamari thamnabagi matangga wari sanakre pradhan mantri narendra modi na hairi new zealand laiba bharat macha sing asi laibak anigi mari phagalakli ba asigi maruai be yumbi amani Auckland da pangthokpa thoram amada bharat macha sing da wangang bada sri modi na hai bharat amasung new zealand gi mari asi marup mapang oiba amadi tungi yaifana bagi yengduna semgatpani sri modi na hai Auckland da gi wellington phawba christchurch da gi queenstown phawda bharat macha sing na laibak anigi mari hena se silhanaba akanba thabak paikali pradhan mantri na hai sahi ni phu gi tungda bharat ki pradhan mantri amana new zealand da chatuna mapham adu da laiba bharat macha sing da laiba kachi ki miyoi koti cha mani phu gi yai pha paujel piri sri modi na hai
1: साथियों भारत आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है भारत मोबाइल डेटा कंजम्पशन में दुनिया के अग्रणी देशों में है आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है
0: tungda numit nini gi new zealand khongchal loisin baga loinana pradhan mantri bharat panglakre pau gi marak thana atien ba break amaga muk
2: halabra
3: hale hale
2: doctor ne kari haira ba
3: ko nasa sin sondam na da mi se kai kai no iron zinc vitamin b9 b12 kai kai ne wali ya as ida bulai mai ni ri
2: leira bro du dia
3: as kai de lai du no da tha ni hum sa hai ba si yauri tha ma gi bulai sing ni jong arom ni hai ne
2: doctor ni sa gi wali hari ba masal sing du di 45 rice how la ba koi rice de loi ni yau hai ba ni
3: asing bra ne
2: asing ba ni ne iram dong gi mari ek ma hau lai ba cheng si da 45 rice na ma ku ma gun ha kwat na kongkalai chu ba e wat ba vitamin wat pen sing ba kya ma de gi ngak thok pu sung me de na hai hai mama bharat sarkar na miyam na phangali ba cheng sing asi da di 45 rice pangan ba hai ba se praja gi hak oir bani iram dam manipur gi chu akoi rice mil na akoi 45 aided rice hai dana miyam na phangan khra bani ne ai adu ba ne kana ba se la horo siko akoi 45 aided rice sizner siko
3: phang pham di
2: akoi mart website akoi mart app adu da gi telecaller sing khutang da loin na manak na dukan sing da loin na phangi hai bani
4: he na kupamaro gi damak 9233594391
0: आकाशवाणी इम्फाल दगी पाउ ताबिरी केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह ना हगोलकलीब मिरोल दा मखोय की मातिक मगुल हेंगथन बदा सौब मतेंग अमा कोइरीबा लाइब्रेरी सिंग सिजिनना बा अपील तौरी न्यू दिल्ली दंगसी जॉय प्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी संगा बगी थोरम द श्री शाह ना हाय लोकनायक जॉय प्रकाश नारायण असी सिंथा निगाय ओयबा निंगतम लानमी वाखल लेब जाति की लुचिंग बा अमनी mahakna laibak asigi damak singtha ningai oiba thabak kya tawrami hainasu sri shahana singtha ki haujik shanabgi pau khangembam james tagi
5: fifa world cup ki ahum suba quarter final match ngasi ahing nongyai matung pung ani makhai da norway amadi england ga aduga mari suba quarter final dana haying ayu pung turu makhai da argentina ga switzerland ga sanagani semi-final match sing tha asigi tara manga amadi tara tarukta sanagani final match na tha asigi kunda sanagani all india yoga culture federation na sinduna october amadagi mari phawba pangthokadaba kunthani pansuba national yoga sna championship lisingani kuntaruk ki trial selection amadi ahum suba manipur yoga sna championship lisingani kuntaruk lakliba july gi tara mathoida waheng lakai community hall da pangthok lagani haina manipur yoga society na thadrok pachirol amana hairi sri sri gopal dev कांखुतना सिंधु ने पांगथोकली लेट मंगसाताबम इबोयामा अमदी पुण्यवती मेमोरियल लीग कम नॉकआउट कांग टूर्नामेंट की ऐसी सानकी मैच ता वालिदा वाबगाइना वांगो युद्धपु पंजिल तरामा पंत्राइन थोइदा थोइक्रे वाशिंगटन
0: थागचेरी जेम्स आरोय बेदा मरोय बे पाव अमुखना मुख्यमंत्री युमनाम खेमचा नहाइरी लैलोन वाईफाई नमदुना फाखी थोदोक चेनब सिंह मथकता लौखप याब थबक लौखतुना चुब वायल फंगनगनी मुख्यमंत्री ना ngasi imphal gi khumal lampak indoor stadium da tara mapal suba governors taekwondo cup hodokre pradhan mantri na hairi new zealand laiba bharat macha singachi laiba anigi mari phagal hanabagi maruai be yumbi amani ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯒꯨꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯐꯥ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞꯀꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯆ ꯑꯃꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯡ 2:30ꯗ ꯅꯣꯔꯋꯦꯒ ꯏꯪꯂꯦꯟꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯆ ꯑꯃꯗꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 6:30ꯗ ꯑꯥꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥꯒ ꯁ꯭ꯋꯤꯠꯖꯔꯂꯦꯟꯒ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫
6: ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫
7: ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯒꯗꯧꯔꯤ꯫
8: ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯍꯥ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫
7: ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯤ
8: ꯑꯏꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 95ꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
7: ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ꯫
8: ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯅꯝꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯐꯣꯟ ꯁꯥꯏꯖꯅ 16 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯃꯌꯦꯛꯅ 12 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
7: ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯂꯃꯥꯏ 4 ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯂꯃꯥꯏ 9 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
8: ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯣꯏ꯫
7: ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ, ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ, ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯈꯨꯠꯏꯒꯤ ꯃꯈꯜ, ꯖꯣꯟꯔꯥ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯥꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫
8: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯦꯜ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ @gmail.com ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯅꯝꯕꯔ 7005489767 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ꯫
7: ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯐꯝꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯇꯤꯡꯅ ꯌꯧꯍꯜꯂꯁꯤ꯫ ꯂꯥꯍꯧꯔꯁꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯊꯣꯛꯅ ꯅꯍꯥꯔꯨꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯒꯤ ꯐꯝꯕꯥꯛꯇ
6: ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯔ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯨꯟꯖꯣꯏ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯁꯪ ꯃꯩꯀꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯔꯥꯁ ꯃꯅꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯝꯕꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯄꯥꯍꯔꯤꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ꯫

0: 타자만비야, 가이다우리 아와 타비시 자자디야. 아마 타디 자우드나. 나 사이팡에 플라우드 수자디. 와 란수 마땅한데.
1: 락바다디 파나킹나 라키바니 와라 자라 캉디니. 이뻇 버터리 시보.
2: 미라, 아이케 수타우디다. 아육 자라 카라완 슬라빠. 아두나니.
0: 나 사이나 링에이 프로그램 하우딩에다디. 록타키 시네리가 잉하다나. 야 마카 람바니다. सार वीडियो लागा प्रोग्राम हे हौ खिबदैदि सुती सांग लौगेदु साने यारक्तबदुगा सार बुकी रुरकैनो पुरा मोंथाख्रेदना तामो पिसा
3: नौ
0: गसाय युक्ति सार दुबु लावै हायरक्ताइने
3: खंगदेदा माइङो बि गसाय यु पावदि लारोय हायरक पनि अदुबु एमेलियाना फोन हंजिल हंजिन तौसिलकबदगिने लाइबनि हरि खुदकत मथन त मागी गारीदने ꯍꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁꯥꯏꯠ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯂꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯅꯤ
4: ꯏꯁꯣꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ ꯅꯣꯡꯃ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯨꯗꯅꯦ ꯈꯪꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯁ ꯃꯕꯨꯀꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯔꯝꯒꯅꯤꯡꯉꯣ
0: ꯃꯦꯔꯥ ꯅꯪ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯈ꯭ꯔ ꯄꯣꯠꯅꯤꯀꯣ
4: ꯑꯦ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ
0: ꯅꯪꯅ ꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯄꯣꯠꯄ ꯆꯠꯂꯝꯈꯤꯗꯤꯕꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯥꯞꯆꯥꯅꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯄꯤꯁꯥ ꯑꯋꯥ ꯊꯕꯤ ꯌꯥꯕꯒꯤꯒꯦ
3: ꯑꯦ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯏꯉꯣꯕꯤ ꯍꯥꯎꯏꯅꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯊꯕꯤꯁꯤꯗꯤ
0: ꯃꯦꯔꯥꯗꯤ ꯑꯍꯨꯝꯕ ꯁꯨꯔꯕꯅꯤ
1: ꯍꯥꯎꯕꯒꯤ ꯆꯥꯕꯅꯤꯗ
0: ꯊꯥꯖꯃꯥꯟꯕꯤꯌꯥ ꯅꯪꯕꯨ ꯑꯃꯠꯇꯗꯤ ꯆꯥꯎꯗ
2: ꯍꯣꯏ ꯏꯆꯦ ꯆꯥꯒꯦ
0: ꯐꯥꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯦꯔꯥ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯥꯞꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ
1: ꯃꯝꯕꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ
0: ꯑꯁ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯧꯅꯨꯀꯣ ꯈꯣꯡꯅ ꯆꯠꯆꯈꯤꯅꯤ
3: ꯑꯩ ꯃꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗ ꯂꯩꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯁ ꯇꯟꯖꯥꯁꯤꯗꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ
5: ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯇꯥꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯤꯕꯣ
3: ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗꯨ ꯇꯌꯥꯔ ꯄꯝꯆꯔ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯀꯩꯊꯦꯟ ꯇꯥꯟꯅ ꯐꯣꯠꯄ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯛꯁꯣꯞꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯐꯣꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯁꯥꯔ
5: ꯀꯩꯊꯦꯟ ꯂꯣꯏꯔꯗꯤ ꯂꯥꯞꯄꯤꯗ
1: ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯦꯁꯣ ꯁꯥꯍꯦꯕꯀ ꯏꯕꯥꯅꯤꯕꯨꯗꯤ ꯉꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯁꯥꯔ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯁꯥꯔ
0: ꯁꯥꯔ ꯑꯋꯥ ꯊꯕꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯈꯣꯛꯄꯅꯤ
5: ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯑꯩ ꯑꯥꯗ ꯈꯔ ꯁꯥꯁꯤꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯉꯥꯏꯈꯤꯗꯣꯏꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ
0: ꯑꯁ ꯇꯥꯃꯣ ꯄꯤꯁꯛꯀꯤꯁꯤ ꯈꯔ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯒꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤꯗ ꯁꯥꯒꯤꯗ ꯌꯥꯍꯧꯕꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯦ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯈꯤꯒꯦ
5: ꯍꯣ ꯑꯃꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯑꯃꯁꯤꯁꯨ ꯁꯨꯡ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯟꯗꯧꯔꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯐꯖꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯐꯔꯅꯤ
0: ꯇꯥꯃꯣ ꯄꯤꯁꯥ
3: ꯏꯕꯦꯝꯃ
0: ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯣ ꯁꯣꯝꯗ
3: ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯏꯕꯦꯝꯃ
0: ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯋꯥ ꯊꯕꯤ ꯃꯄꯨꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯔꯤꯗꯨꯅ
3: ꯑꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯍꯥꯞꯀꯦꯗꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯗ

0: 와, 담비가 라이리
1: 그동네.
0: 사나 마기가리다 타즈마 미바니자 크레시나 아이리.
1: 파리다. 아이디 회 사르다 뭐 하이저기 하이들 칼럼 리브니냐.
2: 담모 아이디 라인가리 데서 레시야니 얌 템부스나트리 라인 데서 레시레이제
0: 까이노 까이노 낭나 하이시보 사이데기 레이리시보 라인가리 아마타 찌엔부스 우데 농아이로이다 사나 하이딩에시데 러우르시바 담모비샤
3: 이비마
0: 오호이 하이비루로
1: 호이호이 소사요. 아이시부 그래도 우리 메라
3: 나나우누피도 라이호 카라레호바
1: 히라 메라 하우지 나바 야바 마탕 준나티 낭게드 아이게드니 레호 가두리시 아이 아코이 사르기 마나타드네 아무토 살루게코
3: 아이 나코에니시디 라이오 파이다코
0: 메라 낭 이루자라 모잉아시
3: 에라 아두이와디 낭나 이루자라가 상간나 통토라가 사라 라이포니 캉에다나 에 타즈만 비야 까이기노 능능아 사이데기 마이통도 농농상나네 쇼쇼 털어 걸레이도 보
2: 가시도 어디다 메라
1: 아 이비모 마이고 비야 아 타즈만 비 라오 라오 라오 에코이기 사르기 가리시드네 뿐네 헤터 잘호나 봐 라오 라오 라오
0: 라오 아 라오르시 가마도
3: 아씨 아니시 뭐 윤병 간네 여러니 까이나 깔라라 하라오니 뉴용네 예
1: 아 사 마닝 비 통치야 온당도 비로 보사 아회 살게 와더비 이제 엉따 합시게 또 봐. 아하. 아이 비마. 라라라. 에코이 살게 가르치다. 까게 비로라. 라라 까불라.
4: 다다두디 할엄마게.
1: 파니샤.
4: 다도시 해기 아버가 락비로.
1: 파니 파니샤.
4: 나사이 마얌디엔 톡보이 코이기 ग्राम सभा में ग्राम पंचायत से पाइखल लिबा में पाइखल कदब थबक सिंह की रिपोर्ट अब बुक ले तो मदुबो कनान सेम
0: ला लबरोसा
4: ला ले है बनते एपीओ ना नहान पिरक पदो दत्ता पी बेदा वात पखरे यावबा आइने सेम दो के न ड्राप सेम मग दुम कावर बा ता पिसक दबो देने फोन दा हाई कि बनिंग सी येम बदे दि फसन सेम म
0: अदुबुदि तामो पिसक न हाई लगतना था जमा मिने सेम बनी ई बगी थबक सिदिने ऑफिसिदा माने हेक जॉइन तबोदगी यामना मतिक पांगी सा खै थाजमा बिसे हाइ हाइ ए थागत बगी वानति मराई बक्ती दनने एमए गी फाइनल एग्जाम दो थाहोग दबगी वानी रा एमए नि
2: इचे यारेबा
4: जॉइन तबोदि कयाम कुइदजा
0: सही फारम खिरोइदसा थाजमा बिदंग न जॉइन तबोदुबु
2: ममांग चेहिगी एप्रिल दनि
0: सा रा लानदनि तौरिसि दाइन हाने से चंबनी सही मंगा आ चंख्री अस मतम सिगा हाइरु रबुदी चंगबु चंगरी हाइरिने इदी थाजमन बिया कमिश्नारु सिलचे दगिनि हाइदाइने माले बिगिने सिकी दिङ न यार पैवानि
4: ओ
0: हायुनि नम सोइन हाइसे चुमदाबा
2: इचेन लोइन हाइरसिदी
4: अ युम्बु काई काईदा
0: आइना सगोमबनतेरा अदुगा मागिना मालोम एयरपोर्ट मनातनि मागीदि इंखोलदु लैबा चाहि अनि फारम खिरोइदा चुमद्रो थाजमा बिया
2: होइजे
0: हाइबा सा लंखाय सिदा अमुकते खामबियो यागद्रो
4: यानी सिदा खामगे यारबो
0: होय चिंगलाफु अंगौबसे खिता लैगे थाजमा बिया नंगसु केकेनो लैनि हाइदाइने लाओदना सा वारो बिनुको कुइरोय फट लैरागा लाकि लाओ कैनु सब उन्दर लेडीज फुलाओ लाइरो रसी
2: हा इसे आइ लेरा रोइदा
0: फारे फारे अदु होइरा गने लाइ होरो को
2: हा से आइ लाके
4: कौ उंगांग दने ग तौदिने खंगन दबी टाइप द पोंग पोंग दने मीन हंग दि सट खुम बदल अमे जिन मरोल म मखोजि मे मे लार बकुम द खुम ओ मादी लुहोंग मतुंगदा इंखोल लेदना यम नंगाइन लेरि जाटवे ओथों नंग सिदना सांग न सेमिन न दोरिदा आइगी वीडियो गि सार सिद पुजर रोइन हाइब मी लेते न दम तौब ओ लायदना मासि लफुगा से कोल गलाइसे
0: सा सार गि लफुजि यौजरे ए थाजमा बिन पाइरि सिदि सा थांजिंगि लफुनि हावबनि यारेनि सा गारी थौबिरो वारो बिया देखो सा सा द खरस मियेचरे
4: काय देदा मतांग मतांगि ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤ ꯂꯐꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ
0: ꯑꯩꯁꯨ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅꯅꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯂꯐꯨ ꯂꯣꯜꯂꯒ ꯃꯪꯒꯜꯒ ꯎꯆꯤꯅꯥꯒ ꯀꯥꯡꯍꯧ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯗꯤꯅꯦ ꯑꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯈꯩ ꯌꯥꯔꯦ ꯊꯥꯖꯃꯥꯝꯕꯤꯌꯥ ꯅꯪꯗꯤ ꯂꯐꯨ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯣ
2: ꯆꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤ
0: ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯃꯥꯝꯕꯤꯗꯅꯦ ꯄꯨꯛꯂꯥꯎꯕꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤ ꯄꯨꯛꯂꯥꯎꯕꯤꯗꯤ ꯃꯔꯤꯡꯈꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯏꯗꯅ ꯃꯔꯤꯡꯈꯥ ꯉꯧꯕꯗꯤꯅꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯁꯥꯗꯤ ꯃꯔꯤꯡꯈꯥ ꯍꯩꯅꯕꯤꯕ꯭ꯔꯣ
4: ꯑꯩꯕꯣ ꯑꯣ ꯅꯍꯥꯟ ꯋꯥꯏ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯇꯝꯂꯤꯉꯩꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨ ꯃꯆꯦꯠꯅ ꯈꯣꯡꯅꯥꯎꯗ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯌꯧꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ
0: ꯑꯁ ꯁꯥꯔꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯃꯇꯥꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯋꯥ ꯑꯝꯇ ꯍꯪꯖꯍꯧꯒꯦ ꯁꯥꯔꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯁꯣꯝꯗ ꯐꯝꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯣ
4: ꯍꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯡꯕ ꯑꯗꯨꯅ
0: ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯩ ꯁꯥꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇꯒ ꯍꯥꯏꯍꯧꯒꯦ
4: ꯀꯔꯤ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡꯗ ꯃꯆꯦꯒꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯧꯕꯨ ꯌꯧꯔꯝꯃꯅꯤ
2: ꯏꯆꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯂꯩꯍꯧꯗꯣꯏꯔꯣ
0: ꯊꯦꯡꯅꯤ ꯆꯥꯛꯀ ꯆꯥꯔꯒ ꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤꯅꯤ ꯌꯥꯅꯤꯅ ꯁꯥ
4: ꯌꯥꯅꯤꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯌꯧꯒꯗꯧꯅꯤ
0: ꯁꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡꯒꯤ ꯃꯆꯦꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯉꯥ ꯑꯌꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯨꯄꯖ ꯑꯃ ꯅꯣꯡ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯍꯥꯎꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯕꯨꯛꯁꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯕꯗ ꯁꯥꯔꯒꯤꯁꯨ ꯄꯨꯖꯔꯛꯀꯦ
4: ꯌꯥꯔꯅꯤꯗ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯌꯧꯔꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯈꯥꯝꯕ ꯌꯥꯔꯗ꯭ꯔ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
4: ꯁꯤꯗ ꯈꯥꯝꯃꯒꯦꯀꯣ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯅꯥꯀꯜꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯆꯪꯂꯒ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯊꯥꯖꯃꯥꯝꯕꯤꯌꯥ
2: ꯆꯦ
0: ꯉꯁꯥꯏꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯂꯧꯊꯣꯛꯎꯒꯦ ꯁꯥꯔ ꯂꯩꯖꯍꯧꯔꯒꯦ
4: ꯍꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄ ꯕꯨꯛꯂꯦꯠꯇꯨ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯦꯑꯣꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯔꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯇꯥ ꯄꯤꯁꯛꯀꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯣꯛꯈꯥꯏꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯌꯔ ꯇꯌꯥꯔ ꯁꯨꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯤ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯀꯥꯕ
2: ꯍꯣꯏ ꯀꯥꯖꯦ
4: ꯑꯣ ꯇꯥꯗꯤ ꯇꯥꯕꯣꯔꯦ
2: ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯖꯦ
4: ꯑꯩꯗꯤ ꯏꯔꯨꯖꯕꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯪꯗꯅ ꯅꯥꯀꯣꯡ ꯂꯩꯈꯨꯜ ꯇꯧꯔꯕꯒꯤ ꯅꯤꯡꯉꯨꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯗ꯭ꯔꯤꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤ ꯄꯣꯡꯕꯣꯏ ꯈꯟꯕ
2: ꯃꯃꯥꯡ ꯁꯤꯠꯇ ꯐꯝꯕꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯅꯤꯡ ꯁꯤꯠꯇ ꯐꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯏ
4: ꯑꯩ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯍꯦꯗꯅꯤ ꯅꯃꯥꯏ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ
2: ꯑꯣ ꯁꯣꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯖꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯣ
4: ꯁꯕꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯏꯁꯇꯥꯐ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯈꯪꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ
2: ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯥꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩ ꯀꯨꯝꯊꯖꯍꯧꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯎꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯒꯜꯂꯣꯟꯁꯨ ꯎꯠꯆꯔꯝꯃꯒꯦ
4: ꯌꯥꯅꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯕꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯗ ꯌꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦꯅ
2: ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯒꯤ ꯄꯟꯊꯨꯡ ꯌꯧꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩ ꯋꯥꯝꯇ ꯉꯥꯡꯖꯔꯔꯣꯏ
4: ꯑꯩ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯍꯦꯟꯅꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯏꯁꯇꯥꯐ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯧꯒꯜꯂꯣꯟ ꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯤ
2: ꯁꯥꯔ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯥꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩ ꯂꯩꯖꯍꯧꯔꯒꯦ
4: ꯅꯍꯥꯟ ꯋꯥꯏ ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯈꯥꯝꯕꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯄꯨꯔꯦ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯂꯩꯆꯤꯜꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯤꯗꯦꯟ ꯀꯅꯥꯅ ꯈꯪꯉꯤ
2: ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯄꯥꯟꯊꯩ ꯀꯣꯛ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯎꯖꯩ ꯁꯥꯔꯅ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯅꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯔꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯈꯥꯝꯕꯤꯌꯨꯕ
4: ꯄꯟꯊꯨꯡꯐꯝ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯅꯕꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯈꯥꯝꯒꯅꯤ
2: ꯁꯥꯔ ꯋꯥꯔꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ
4: ꯅꯠꯇꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯣꯏꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯗꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯟꯗꯨꯞ ꯑꯃ ꯍꯧ
2: ꯁꯥꯔ ꯄꯟꯗꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛꯇꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩ
4: ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯥꯎꯕꯗꯧꯅ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯇꯅ ꯅꯪꯕꯨ ꯊꯤꯈꯤ ꯐꯪꯕ ꯀꯧꯕꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ
2: ꯐꯪꯗꯕꯅꯕꯨ ꯐꯔꯦ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯅ ꯂꯥꯍꯜꯂꯕ ꯑꯩꯅ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯃꯤꯔꯣꯠ ꯑꯣꯏꯈꯤ
4: ꯏꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯂꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯗ꯭ꯔꯣ
2: ꯁꯥꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯋꯥꯈꯟ ꯇꯥꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯕꯤꯔꯣ
4: ꯑꯦꯁ ꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯁꯤꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯍꯧꯔꯕꯅꯤ ꯈꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯟꯅꯤ ꯑꯩ ꯅꯪꯕꯨ ꯈꯟꯈꯤꯗꯕ ꯊꯤꯈꯤꯗꯕꯗꯤ

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 10:31 और 10 सेकेंड, और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हर सिंगार का। और हर सिंगार के इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। बशीर बद्र साहब कहते हैं कि अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। जिंदगी भी पानी की तरह है, कभी शांत कभी दरिया, कभी मचलती लहरें और कभी एहसासात की ऐसी रवानी जो दिल को छू जाए। इसी खूबसूरत ख्याल के साथ आज के सफर का हम आगाज करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ, और वो नगमा है 1972 में आई फिल्म शोर से। इस गीत को लिखा है राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने, और इसका बेहद खूबसूरत संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने। तो आइए हर सिंगार के इस बहुत ही खूबसूरत महफिल का आगाज करते हैं इसी नगमे के साथ, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में।

लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ों में ये नगमा था फिल्म शोर से, और यह फिल्म आई थी 1972 में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल है हर सिंगार की, यानी मोहब्बत की, फूलों की वो महफिल जिसमें हम प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं और बेहद खूबसूरत सदाबहार रोमांटिक गीतों के साथ हम हाजिर होते हैं। कहते हैं मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जो दिल की धड़कनों को भी एक नई रवानी देता है। कभी किसी की मुस्कान में बस जाती है तो कभी किसी के साथ निभाए गए वादों में अपनी खुशबू छोड़ जाती है। और जब प्यार की ऐसी ही दास्तान सुरों में ढल जाए तो वो गीत बरसों बाद भी दिल के बेहद करीब रहता है। जी हाँ, अब मैं बात करने वाला हूँ उस यादगार फिल्म की जिसने अपने रोमांस, संगीत और दिलकश अंदाज से सिनेमा प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। और वो फिल्म थी 1971 में निर्देशक नासिर हुसैन के निर्देशन में बनी ये फिल्म कारवां। बड़े पर्दे पर आई थी जो बेहद मशहूर रही। निर्माता थे उनके भाई ताहिर हुसैन साहब, और पर्दे पर नजर आई सदाबहार जोड़ी जितेंद्र और आशा पारेख की, जिनकी अदाकारी ने इस फिल्म को और भी खास बना दिया। फिल्म का संगीत अपने आप में एक बेहद ही नायाब तोहफा था। दोनों में जादू घोला आर डी बर्मन साहब ने, और बेहद खूबसूरत अल्फाज से इसके गीतों को लिखा मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने, और अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों से इसे अमर बना दिया मोहम्मद रफ़ी साहब और हम सब की प्यारी लता जी ने। भारत में सुपरहिट रही कारवां की लोकप्रियता सरहदों के पार भी पहुंची। वर्ष 1979 में जब यह फिल्म चीन में प्रदर्शित हुई तो वहां भी इसने कामयाबी का नया इतिहास रच दिया और करोड़ों दर्शकों का प्यार हासिल किया। आज भी इसे भारतीय सिनेमा की सबसे सफल और यादगार फिल्मों में से एक माना जाता है। तो आइए उसे फिल्म का एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में।

कितना प्यारा वादा। कारवां फिल्म का ये नगमा लता जी और रफ़ी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में मैं हूँ आपके साथ फिरोज़। मोहब्बत की दुनिया भी कितनी अजीब होती है। कभी कोई चेहरा अचानक दिल में उतर जाता है तो कभी कोई अनजान सी मुलाकात जिंदगी की सबसे हसीन दास्तान बन जाती है। शायद इसी एहसास को शब्दों और सुरों में पिरोया गया था फिल्म अनजाना में। साल 1969 में एक फिल्म आई थी अनजाना। ये बेहद खूबसूरत फिल्म थी जिसके निर्माता और निर्देशक थे मोहन कुमार साहब। ये रोमांटिक फिल्म बड़े पर्दे पर बहुत ही कमाल की थी और बहुत ही मशहूर भी हुई थी। फिल्म में राजेंद्र कुमार और बबीता की खूबसूरत जोड़ी ने मोहब्बत के जज्बात को बड़ी सादगी और खूबसूरती से पर्दे पर उतारा। वहीं प्राण, प्रेम चोपड़ा और निरुपा रॉय जैसे दमदार कलाकारों ने कहानी को और भी असरदार बना दिया। और जब बात हो इसके संगीत की तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का नाम अपने आप ही एक खूबसूरत एहसास जगा देता है। उनकी मधुर धुनों ने इस फिल्म के गीतों को ऐसा रंग दिया कि वे आज भी सुनने वालों के दिलों में उसी ताजगी के साथ बसे हुए हैं। तो आइए उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह नगमा था फिल्म अनजाना से मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में। दोस्तों कहते हैं कि कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते जाने पहचाने होते हुए भी अनजाने से लगते हैं और कुछ निगाहें पहली ही मुलाकात में दिल पर ऐसी दस्तक देती है कि उनकी कशिश उम्र भर साथ रहती है। मोहब्बत का भी यही खूबसूरत एहसास समेटे हुए आई थी साल 1971 की एक यादगार फिल्म जाने अनजाने। इस फिल्म के निर्देशक थे शक्ति सामंता साहब और पर्दे पर नजर आए थे सदाबहार अभिनेता शमी कपूर, विनोद खन्ना और बहुत ही खूबसूरत अदाकारा लीना चंदावरकर, जिनकी अदाकारी ने इस कहानी में जज्बात और एहसास को बहुत ही खूबसूरत एक नाम भी दिया था। फिल्म के गीतों को अपने खूबसूरत अल्फाजों से सजाया हसरत जयपुरी साहब ने, जबकि सुरों को दिल में बसाने वाला संगीत दिया शंकर जयकिशन साहब ने। यही वजह है कि इस फिल्म का संगीत आज भी सुनने वालों के दिलों में ताजगी और मोहब्बत की खुशबू बिखेर देता है। तो आइए दिल को कुछ पल के लिए सुकून देते हैं, यादों की महफिल सजाते हैं और उन सदाबहार गीतों की तरफ आगे बढ़ते हैं, उन हसीन लम्हों में खो जाते हैं जहां किसी की नीली नीली आंखें सिर्फ एक नज़र में दिल का करार चुरा लेती है। और यह नगमा है जाने अनजाने से रफ़ी साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में।

फिल्म जाने अनजाने के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज़ को अब दीजिए हर सिंगार से इजाज़त। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद ठीक 11:10 पर आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा का रिपीट ब्रॉडकास्ट, और उसके बाद 11:40 पर गीत मेरे मनमीत को लेकर मैं आपके बीच रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित पाँच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we will take calls from you, our listeners, on market related queries. But listeners, do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on these numbers: 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, aaj shanivar hai aur har shanivar ki tarah hum aapke phone calls par puche gaye sawalon ko seedha karyakram mein shamil karenge. Aap hame call kijiye 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन श्रोताओं, याद रखें कि किसी खास स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी हम इस कार्यक्रम में आपको नहीं दे पाएंगे. बहरहाल, आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: धन्यवाद प्राची, थैंक यू सो मच अनुभा. सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं और आपसे बातचीत भी करेंगे, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्राची. Benchmark domestic indices snap four-week winning streak. Sensex and Nifty decline nearly 0.3%. India and New Zealand elevate ties to strategic partnership, set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030. And global crude oil prices jumped this week amid renewed hostilities in West Asia.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक लगातार चार हफ्तों की बढ़त के बाद इस सप्ताह लुढ़के. सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 0.3% की गिरावट आई. भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया. वर्ष 2030 तक वस्तु और सेवा में हर साल द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है. और पश्चिम एशिया में फिर से बढ़ते तनाव के कारण इस सप्ताह कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल आया.
0: And before we begin the program and take your calls, a very important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And over to Prachi for the top story of the day.
1: Top story लेंगे अनुभव, मगर उससे पहले उत्तर प्रदेश से हमारे साथ विवेक जुड़ रहे हैं. विवेक जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: मार्केट मंत्रा टीम, प्राच के एक्सपर्ट को नमस्कार.
2: नमस्कार
3: मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं जो इनकम टैक्स का AIS फॉर्म होता है
2: जी,
3: मुझे इनकम टैक्स फाइल करना है, तो जब मैंने AIS फॉर्म डाउनलोड किया है
2: जी,
3: तो उसमें मुझे सर, चूंकि मैं म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता हूँ
2: जी,
3: और जो भी मुझे ADR वगैरह बीच में पेड होता है वो मैं कम अमाउंट लमसम भी उसमें इन्वेस्ट करता हूँ
2: जी,
3: तो लमसम के लिए मैंने सर जो फंड सेलेक्ट किए हुए हैं उसमें मैंने STP के माध्यम से लिक्विड फंड में डाला हुआ था, और STP के माध्यम से मैं अपने SIP में म्यूचुअल फंड में पैसा ट्रांसफर करता रहता हूँ.
2: ओके,
3: तो सर जो AIS में है उसको मुझे किस प्रकार इनकम टैक्स में दिखाना पड़ेगा, मुझे AIS से समझ नहीं आ पा रहा है. उसमें ट्रांजेक्शन आ रही है 15 से 20 ट्रांजेक्शन है, तो उसको मैं कैसे समझ के उसको फाइल करूँ क्या गाइड.
2: चलिए विवेक और अनुभव और प्राची, क्योंकि टैक्स फाइलिंग सीजन चल रहा है, 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट है
1: जी.
2: तो मुझे लगा बहुत सारे श्रोताओं को, और बड़ी तारीफ की बात यह है कि विवेक उसको खुद करने की कोशिश कर रहे हैं बजाय किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेने के. AIS का मैंने एक नया नाम दिया है उसको, वैसे तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट कहते हैं, मैंने इसका नाम दिया आईना इसे समझिए, क्योंकि ये आपको आपके साल भर के ट्रांजैक्शंस के बारे में पूरी एक लेखा जोखा सामने दिखा देता है. तो विवेक, जो SIP म्यूचुअल फंड्स में आपने किए हुए हैं उनको अगर आप उनसे सहमत हैं, देखिए AIS केवल एक ट्रैकिंग सिस्टम है, यानी कि आपने जो एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, को बड़ा खर्च किया है, प्रॉपर्टी ली है, शेयर्स लिए हैं, कुछ भी ऐसा ट्रांजैक्शन किया है, तो AIS आपको एक दिशा दिखाने का है. तो आपको मैं यह सलाह दूंगा कि अगर AIS में जो एंट्रीज आ रही हैं आपके SIP की, अगर वो मैच कर रही हैं आपके असली निवेश के साथ, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको म्यूचुअल फंड से कोई मुनाफा हुआ है, डिविडेंड आया है, या आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है, उसी को आपने अपने रिटर्न में दिखाना है। आयकर विवरणी में अगर IFS जो स्केड्यूल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वहां दिखा सकते हैं। अगर कोई आपको डिविडेंड आया है, कैपिटल गेन आया है, तो एक स्केड्यूल CG होता है उसमें आप दिखा सकते हैं। AIF सिर्फ आप रिकनसाइल कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने जो असल में किया है और AIF के बीच में कोई फर्क है, तो उसमें नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो एक फीडबैक का ऑप्शन होता है। उस फीडबैक के माध्यम से आप कह सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन मेरा नहीं, अक्सर होता है किसी और के ट्रांजेक्शन आपके AIF में आने लग जाते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, आप उसको देख लीजिए कि आपके असली ट्रांजेक्शन से वो मैच कर रहा है कि नहीं। बाकी आपने जो आयकर रिटर्न में दिखाना है वो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिविडेंड दिखाना है, या उस म्यूचुअल फंड से अगर कैपिटल गेन हुआ है तो दिखाना।
0: जी, लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल कमिंग इन फ्रॉम बेंगलुरु। श्रीकांत हैज जॉइंड अस ऑनलाइन। श्रीकांत, वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
4: जी नमस्कार।
0: नमस्ते, अपना सवाल पूछिए।
4: मुझे कहना है कि जिस तरह 4 महीने पहले जो लड़ाई हुई थी उसके कारण सूट के दाम $70 से बढ़ के 126 तक पहुंचे।
2: जी,
4: हमारी सरकार ने वहां पे 13-14 रुपए जो है वो पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ठीक है। अब वो वापस 126 से 70 पे आ गया, लेकिन वो वहीं पड़ा है। उसी तरह से जिस तरह 4 साल पहले जब रशिया की अटैक हुई थी तो उसी समय भी $70 पे रेट था और बढ़ के 140 हुआ, तो हमारी सरकार ने उसको बढ़ा करके 100 कर दिया पेट्रोल को। और फिर जब जब दाम घड़े क्रूड के तब तब आपने उस पर टैक्स लगा के हमेशा उसको बराबर रखा। तो अगर भाई साहब यही हालत रही तो ना तो इन्फ्लेशन कम होने का है और ना जनता की दुविधा कम।
2: श्रीकांत जी देखिए, मैं थोड़ा इसके पीछे का आपको गणित बता देता हूँ। आप जो कह रहे हैं हम उसका उसका सम्मान करते हैं, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, हर एक के अपने अपने विचार होते हैं
0: जी।
2: एक तो पहले 76 दिन कीमतें नहीं बढ़ी थी, तो पहले 76 दिन में बहुत बड़ा 1,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को घाटा हो रहा था। दूसरा इसमें यह भी बात है कि ऐसा नहीं है कि ये दाम घटेंगे नहीं। अगर ये $70, अब देखिए ना, हम जब बल्कि मैं भी सोच रहा था कि अब तो $71-72 हो गए तो शायद घटे, उसी टाइम फिर से लड़ाई शुरू हो गई। फिर ये 2 दिन पहले $80 के आसपास पहुंच गया, $79 के आसपास पहुंच गया। तो

0: पेट्रोलियम मंत्री महोदय जो हैं हरदीप पुरी जी, उनका बयान आया पीछे कि हम 2-3 महीने देख रहे हैं, ये अगर टिक जाते हैं वहां पर तो हम घटाएंगे, क्यों नहीं घटाएंगे लोगों को। और अभी भी श्रीकांत जी मैं बताना चाहूंगा कि डीजल में अभी भी अंडर रिकवरी है, पेट्रोल में तो आ गया था पर डीजल में अभी भी अंडर रिकवरी का मतलब है उनको प्रति लीटर घाटा हो रहा है। तो जैसे ही घाटे की भरपाई होगी करेंगे, हम भी उम्मीद रखते हैं कि करेंगे। और सरकार बकायदा इस पे जो आप बात कह रहे हैं, आपके जो भावनाएं हैं वो सम्माननीय हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता की आवाज सरकार तक पहुंचती है और उसको उसको जब उचित समय होता है उसके पीछे गणित होता है तो उस गणित को ध्यान में रख के। बाकी ये बात सच है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, पहली बात तो 13-14 नहीं 7.5-8 रुपए बढ़ाए गए, 13-14 तो खैर नहीं बढ़े थे, पर श्रीकांत जी को मेरे ख्याल जो उसके कारण महंगाई है शायद वो पिंच कर रही होगी। मुझे उम्मीद है श्रीकांत जी अगर ये कीमतें $80 से नीचे रही और 1-2 महीने तक तो ये जरूर घटाए जाएंगे।
1: कोलकाता से हमारे साथ LP कोठारी जुड़ रहे हैं। कोठारी जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल।
2: गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, कोहली जी को नमस्कार।
0: नमस्कार कोठारी जी।
2: कोहली जी, जैसे मैं तो इनकम टैक्स का प्रैक्टिस करता हूँ तो ये AAS और TIS की फिगर्स जो है 90% 95% तक ठीक है सब
0: जी,
2: लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जिनमें उनकी फिगर कंफ्यूजिंग आ रही है
0: जी,
2: और वो मिल नहीं है, जो एक्चुअल फिगर मेरी है हमारे क्लाइंट्स की है उससे वो अलग आ रही है
0: जी।
2: और इसमें से भी जैसे शेयर सेल्स सिक्योरिटी सेल्स वगैरह की फिगरें, तो सर अब मैं उनको या इस TIS को फॉलो करें या हमारे पास कुछ ऐसा रास्ता है कि हम उनको इनको ये कह सके कि भाई ये फिगर जो है वो सही नहीं है
0: जी। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कोठारी साहब, आपसे पहले भी एक दर्शक इसी से मिलते जुलती बात पूछ रहे थे। मैं आपको बता दूं कि AIS जो है एक सूचक है, एक इंफॉर्मेशन जो कुलेट होकर आती है उसको प्रेजेंट करने का आपके लिए एक रिकंसिलिएशन दिया जाता है। अगर आप उससे सहमत नहीं है कोठारी साहब, आपको लग रहा है कि जो आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं असल में वो ट्रांजैक्शंस आपके नहीं, ऐसा भी अक्सर अनुभव प्राची देखा गया कि जैसे पैन नंबर गलत डाल दिया तो किसी और का प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, किसी और के शेयर्स हमारे AIS में दिखते हैं, तो वहां पर कोठारी साहब नीचे फीडबैक का ऑप्शन है, आप उसमें फीडबैक डालिए। अगर आपको लग रहा है कुछ ट्रांजैक्शन आपके असली ट्रांजैक्शन से रिकंसाइल नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें फीडबैक डालिए कि ये ट्रांजैक्शन मेरा नहीं है, उसको उसका संज्ञान लिया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा। तो कोई बहुत ज्यादा विशेष चिंता की बात नहीं, आपकी रिटर्न अगर आपके ट्रांजैक्शंस पर एक्यूरेटली बनाई गई है तो AIS में थोड़ा इधर उधर भी होता है तो आप उसका बाद में जवाब दे सकते हैं।
1: दिल्ली से हमारे साथ बीरबल जुड़ रहे हैं। बीरबल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
3: नमस्कार कोहली साहब को। नमस्कार।
0: नमस्कार बीरबल जी।
3: सर ये पूछना था, जैसे मेडिक्लेम के ऊपर गवर्नमेंट ने GST घटाया था
0: जी,
3: मैंने मेरी अभी पॉलिसी ड्यू ये उसकी किस्त भर दी, मैंने पता किया था मेरी बैंक के थ्रू है, उसको कहते हैं ग्रुप पॉलिसी है ये, उसमें उन्होंने GST नहीं घटाई, ये ठीक है क्या जी?
0: देखिए GST जिन जिन पॉलिसीज पे घटाया गया है वो बीरबल जी वो पॉलिसीज की लिस्ट आपके पास है, कोई एक पॉलिसी है जिसपे शायद इनका GST नहीं घटा है या उस पर अभी भी GST चल रहा है, और भी जैसे कार इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है, उस पर भी GST है, तो सब चीजों पर नहीं घटाया गया है। मुझे लग रहा है GST 2.0 जब सेप्टेम्बर में आया तो बहुत सारी चीजों पर घटाया गया और बहुत विचार करके, बहुत लंबा उस पर चिंतन चला, बहुत लंबा उस पर बकायदा रिसर्च की गई कि कहां कहां लोगों को राहत देनी है। उम्मीद करते हैं आप जहां दूसरी चीजों पर भी चाहते हैं शायद आने वाले समय में वो घटाया जाए, पर फिलहाल अब जैसा है तो है, आप भी देते हैं हम भी देते हैं
4: जी। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल कमिंग इन फ्रॉम बेंगलुरु। NR प्रसाद जॉइन्स अस ऑनलाइन नाउ ऑन द अदर साइड ऑफ द फोन लाइन। मिस्टर प्रसाद, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
5: Hi, good evening, Market Mantra. This is Anna Prasad from Bangalore. Hello, Mr. Rohatki. Hello, Ms. Prachi. Good evening, Sharajji.
0: Good evening, Mr. Prasad.
5: Two questions, Sharajji.
0: Yes.
5: My first question is, about 3-4 weeks back, there was an analysis from the leading company.
0: Yeah.
5: India has fallen down to the 6th position in the top 10 market in the world. It has gone behind Taiwan and now it is in the 6th place.
0: Okay.
5: Basically, this is because of the, could be because of the geopolitical and war in India.
0: Yeah.
5: But it has fallen down to 6th position. How do you see now Indian market versus the foreign stock markets?
0: Okay.
5: My second question is, SEBI has revived the buyback schemes from 1st of August.
0: Yeah.
5: Now, what will be the features for this? Personally, when I send this thing on a buyback scheme,
0: yeah,
5: how the capital gains are applicable to me? Thank you. These are my two questions.
0: All right, Mr. Prasad, your first question is that the market.

0: market cap, you know, is what Mr. Prasad is referring to, Anubha and Prachi. Yes, market capitalization, you know, the way it is calculated, number of shares floated by the market price of the shares. So I think this is a very fluctuating piece of data. And right, because Taiwan and all that, because they are into semiconductors and so on. So our market, because of the geopolitical reasons and because of crude oil, because our country was heavily exposed to crude oil shocks. 87-88% of our total crude is imported. So obviously we were quite impacted vis-a-vis crude oil. So that was the reason our markets reacted. We have now recovered from that point. We had almost gone down to 23,000. I'm talking of Nifty. We are now well above 24,000. And global markets, you know, each zone in the geography has its own fundamentals. Sometimes we find the Kospi reacting. Sometimes we find the Nikkei reacting. Sometimes we find the Hang Seng. In fact, Hang Seng, the capitalization in Hong Kong market went ahead of us, because Hong Kong is a tiny country. Sometimes we find FTSE, CAC, DAX, Dow, S&P, NASDAQ. So they keep reacting, you know. So I think this cannot be taken as a parameter, Mr. Prasad, more importantly, to measure the, the performance of the company. I'm sure we will recover. Your second is about the buyback. Yes, buyback under the new rules applicable from 1st April. Is that buybacks will now be treated as capital gains. Earlier, if you remember, they were treated as dividends, and the capital used to be treated in the capital loss, but now they'll be treated as capital gain because they are not, because of the taxability change which has been made in the budget, Mr. Prasad. I hope both the points are clear, and I remain very optimistic on the markets, and our markets will recover. It's just a matter of time before that happens.
1: Sharadji and Prachi, we have our next caller online with us, but before we take the call from Amit Jha from Delhi, Prachi, why don't you tell us how the markets behave this week?
2: Bilkul. प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में इस सप्ताह लगभग 0.3% की गिरावट आई. इससे लगातार चार हफ्तों की बढ़त का सिलसिला टूटा. पश्चिम एशिया में एक बार फिर से बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का असर इस सप्ताह बाजार पर साफ साफ दिखाई दिया. हालांकि विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों की लगातार लिवाली ने बाजार को थोड़ा सहारा दिया. साथ ही कंपनियों की पहली तिमाही के नतीजे ने बाजार पर सकारात्मक प्रभाव डाला और इस कारण सप्ताह के दूसरे भाग में बाजार को रिकवरी में मदद मिली. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स इस सप्ताह 195 अंक गिरकर 77,569 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक लुढ़ककर 24,207 पर आ गया. इस सप्ताह विस्तृत शेयर बाजार ने प्रमुख शेयर सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया. निफ्टी मिड कैप 100 में 1.3% की बढ़त हुई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 1.2% की तेजी आई. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह भारतीय रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.32 रुपए पर बंद हुआ. और जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से अमित झा. अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: हेलो
2: जी, नमस्कार.
3: सर नमस्कार.
0: नमस्कार अमित जी.
3: मैं ये पूछा था सर, जैसे कि सभी अभी पश्चिम एशिया में जो हालात थे 2-3 महीने पिछले में सर
0: जी.
3: तो कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट 26-27 के क्वार्टर में कैसे रहने की उम्मीद, क्योंकि प्रभावित तो हुई होगी उनकी बिक्री या कुछ भी इनकम वगैरह. और दूसरा सर प्रश्न ये है सर कि अभी भी हम कह तो रहे हैं कि हम ऊर्जा के अन्य स्रोत जैसे स्रोतों पर निर्भरता कम कर रहे हैं, जिससे हमें जो विदेशी मुद्रा जाती है, जैसे कि हम ऑयल एंड गैस का और उर्वरक का ज्यादा इंपोर्ट करते हैं. ये तो सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन सरकार की ओर से कितना प्रयास हो रहा है, हम कितना गीगावाट अन्य स्रोतों से, जैसे मान लीजिए रिन्यूएबल हो गया, परमाणु एनर्जी हो गया, चाहे पवन ऊर्जा विंड एनर्जी है, इनसे हम थर्मल पावर के मुकाबले कितना प्रतिशत बढ़ रहे हैं? क्या आपके हिसाब से सर ये संतोषजनक है प्रगति?
0: जी, आपका पहला सवाल है Q1 रिजल्ट से. Q1 हम अप्रैल जून क्वार्टर के रिजल्ट्स बोलते हैं अमित. Q1 के रिजल्ट्स थोड़े से प्रेशर में रह सकते हैं, क्योंकि इस दौरान में युद्ध चल रहा था और क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हुई थी
2: जी.
0: अब थोड़ी सी क्रूड ऑयल की कीमतें ठंडी हुई हैं, तो आने वाला क्वार्टर बेहतर हो सकता है. पर इसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स की मिक्स रिजल्ट्स आएंगे. कुछ अभी पीछे एक आईटी कंपनी का रिजल्ट आया जिसमें मिला जुला सा रिजल्ट आया, तो मैं समझता हूँ ये क्वार्टर थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा. दूसरा, आपने एनर्जी सोर्सेज का पूछा, तो अभी तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा. मैं किसी एक का उठा लेता हूँ, परमाणु सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी जो होती है. अभी हम लगभग 9 गीगावाट हम न्यूक्लियर उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं. हमारा लक्ष्य है कि 2047 विकसित भारत का जो हमने टारगेट रखा है उसमें 100 गीगावाट पहुंचाने का. तो बिल्कुल काम चल रहा है उस पर. बायोगैस हो गया, सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है अमित, और अब ये जो हाल में संकट हुआ है इसने एक तरह से एक्सेलरेटर दबा दिया है। मुझे लग रहा है जितनी भी संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं उन सबको अब ये लगने लगा है कि इस पे तेजी से काम कर। भारत ने 2070 का लक्ष्य रखा था पर मुझे लग रहा है हम उस लक्ष्य को और शीघ्र पा पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। हमारे आपके लाइफ टाइम में ही हम उम्मीद करते हैं ऐसा हो जाएगा, ऑल्दो आपको आपको ईश्वर लंबी आयु दे। जी,
1: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। योगेश इज कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली। योगेश, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
4: नमस्ते।
0: जी,
4: उसको लेकर के है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इनके थ्रू कैसे अलग है म्यूचुअल फंड से, और जस्ट इन केस अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस क्रैश होते हैं तो क्या उस केस में ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी जितने ज्यादा गिर सकते हैं या फिर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से इनमें कम गिरावट होती है, और इनका बेंचमार्क इंडेक्स क्या होता है म्यूचुअल फंड की तरह?
0: बहुत अच्छा सवाल है योगेश। रीट और इनविट का इन्होंने पूछा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दो नए प्रोडक्ट्स हैं। अगर हाँ योगेश, अगर कल को मार्केट क्रैश होता है प्रॉपर्टी का तो उसमें फिर नेचुरल बात है इनकी वैल्यूएशन भी फर्क पड़ेगा। आपको पता है ये जो रिटर्न देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, ये डिविडेंड देते हैं। मान लीजिए किसी ने ऑफिस बिल्डिंग दी हुई है, उसका किराया आ रहा है, वो किराया सब लोगों में बांट दिया जाता है। कल को कोई बिल्डिंग बेची जाती है, उससे जो कैपिटल गेन होता है उस कैपिटल गेन को भी सब लोगों में बांट दिया जाता है। बिल्कुल, अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस जहां इन्होंने लिया हुआ है अगर वो किसी वजह से क्रैश कर जाते हैं, हालांकि इतनी जल्दी प्रॉपर्टी के प्राइसेस इस तरीके से क्रैश नहीं करते जैसे स्टॉक मार्केट करती है, पर हाँ अगर उसमें करेक्शन आता है तो उसमें जो साझेदार हैं वो, और इसका मैं स्ट्रक्चर आप पूछ रहे थे, इसका स्ट्रक्चर आगे एक कंपनी होती है एसपीवी उसको कहते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है, और उसके आगे एक ट्रस्ट बनी होती है, उस ट्रस्ट में सब लोग जो है एक तरह से भागीदार बन जाते हैं और उन सब में उसको बांटा जाता है। इसका बेंचमार्क ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा आपने पूछा, इसका जो टोटल वैल्यूएशन होता है जो एसेट बेस होता है, क्योंकि हम यहाँ नाम नहीं लेते, मेरे दिमाग में एक दो बहुत फेमस रीट और इन्वेट के आ रहे पर क्योंकि हम यहाँ नाम नहीं लेते तो वो बाकायदा उसका जितना उसका टोटल पोर्टफोलियो होता है उसी के अनुसार उसकी वैल्यूएशन की जाती है। मोटा मोटा आप इसको समझते, थोड़ा सा आज लोग बड़े लंबे लंबे डिस्कशन वाले पूछ रहे हैं और समय हमारे पास सीमित होता है तो बहुत गागर में सागर भरना पड़ता है।
2: जी, बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है, मैं तो इसे बड़ा अच्छा मानती हूँ। जुड़ते हैं भिलाई से, भिलाई में हम रवि हमें कॉल कर रहे हैं। रवि जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
5: नमस्ते प्राची जी, नमस्ते अनुभा जी और शरद जी को नमस्ते।
0: नमस्कार,
5: मेरा शॉर्ट ही रहेगा सर
0: जी।
5: मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो गोल्ड और सिल्वर में कभी सबप्राइम क्राइसिस जैसी परिस्थिति आ सकती है क्या?
0: गोल्ड और सिल्वर में कैसी परिस्थिति आ सकती है? सतरंग परिस्थिति
5: में जो सब प्राइम क्राइसिस जो हुआ था,
0: सब प्राइम, अच्छा सब प्राइम से नहीं, गोल्ड और सब प्राइम का रवि जी मतलब ये था 2008 में आई थी ये, और मुझे याद है एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर था उस टाइम जिसमें ये क्राइसिस आई थी। हम नाम नहीं लेते हैं तो मैं नाम अवॉइड कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से नहीं सब प्राइम क्राइसिस इसमें नहीं आ सकती क्योंकि ये वहां आती है जहां पर आप सारा ही उधार पर काम चलता है। सब प्राइम क्राइसिस का मतलब है कि आपने बहुत सारे मॉर्गेज किए, प्रॉपर्टी का मुझे याद है हाउसिंग क्राइसिस थी, लोगों को अपने लोन रीपे करने में दिक्कत आ गई थी। नहीं, इसमें इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि जो गोल्ड लोन्स लिए जाते हैं उसमें सोने को प्लेज किया जाता है, तो अगर आप लोन वापस नहीं कर पाते हैं तो आपने जो अपना आभूषण रखवाया हुआ है वो उनका हो जाता है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। और उसका वो 70-80% आपको देते हैं, पूरा तो देते भी नहीं, तो वो करेक्शन ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता इसमें रवि जी कोई सब प्राइम क्राइसिस जैसी कोई कभी सिचुएशन आएगी, ऐसा नजर नहीं आता है।
1: Gautam from Ghaziabad is online with us, but before we take your call, Gautam, let's have a look at how the US markets behaved during the week and yesterday. Wall Street ended on a positive note yesterday. Among the major indices, the S&P 500 gained 0.4% and the Nasdaq Composite as well as the Dow Jones Industrial Average rose by 0.3%. For the week, the Nasdaq climbed 1.7%. The S&P 500 increased by 1.2%, while the Dow fell by 0.5%. Meanwhile, South Korean chipmaker giant, which made its U.S. debut on Friday, opened 14% higher. Looking ahead, investors will focus on the quarterly earnings season, which kicks off next week, as well as developments in negotiations in West Asia. And now, Gautam, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
6: Thank you. Good evening, Market Mantra team. I have a small question for the expert.
0: Yeah.
6: This is a stock which has been held for 5 years, which goes through a split.
0: Yeah.
6: And when this stock is sold, say, within a year, what kind of capital gains will it attract?
0: All right, Gautam, if there's a stock split, you see, when you calculate capital gain, you from the selling price, you subtract the cost of the stock. So when it goes for a split, let's say a 10 rupee share is split into two, 5 rupees each. So you'll obviously subtract 5 rupees from that, because now that the cost has been split into two portions. Suppose a 10 rupee share, which has been split into two, you end up selling for 50 rupees. So in 50 rupees, if you sell one part of the share, the cost of acquisition will be 5 rupees, which is two portions. So a 50 minus 5, 45, of course, will be the, and on that you pay, if it's long-term capital gain, you pay 12.5%. Otherwise, you pay on short-term capital gains. Yes.
2: और कोलकाता से हमारे साथ था अतनु साहा जुड़ रहे हैं. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
7: प्रणाम सर. And thanks to everybody, and thanks to our All India Radio. Sir, my question is a little weak. This is out of El Nino situation right now, is at least whatever the information we have.
0: Yeah.
7: Rain is going on everywhere. So what is your opinion about matter of, because India is based on agricultural sector, at least till now, till important as far as PPP is concerned. Sir, another point is that do we expect a credit loan towards, in this regard, related with, sir, about MSME and agricultural sector, credit from banks or another substitute area? Thank you very much, sir.
0: All right, Mr. Tanu, the second part of your question wasn't very clear, although I could get a gist of it. I think El Nino impact is being felt around the world, and India, you know, if you see the IMD forecast this year, yes, it is said that we may be deficient in terms of monsoons by about 10% or so, although this the estimate keeps changing as we progress. So far, there's been

0: yes, we are, because we are primarily an agri-driven economy. So any impact of weather does have an impact on our economy as well. And I think the second part of question is also related to that. What will be the impact on MSMEs? Yes, the agri-based industries and MSMEs also get impacted because the agriculture produce is impacted. And by the way, El Nino is not necessarily about shortage of rain. El Nino makes things very unpredictable. Yes. You could have very big rain, very excessive rain. You could have absolute deficient rain. You could have unevenly distributed rain. You could have a regionally imbalanced rain. So El Nino can take many forms and shapes. We are just at the about the beginning of the monsoon season. Let's wait till the end of August to make a final conclusion. And then your answer will be more comprehensive.
1: जी श्रोताओं आइए आगे बढ़ते हैं. अन्य खबरों में भारत और न्यूजीलैंड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में हुई वार्ता के बाद आज अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया. इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक वस्तु और सेवा में अपने सालाना द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि न्यूजीलैंड का उनका ये दौरा आपसी संबंधों को मजबूत करने के क्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. इससे दोनों देशों के बीच में स्थापित हुए संबंधों को नई गति मिलेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों के चलते किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे.
2: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे. इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया. इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे.
3: Right, let's take the next call from Bhargav. Hello. Who's calling us from Delhi. Bhargav, we are running short of time, so I'll ask you to please be very brief.
4: Jain sir, ASIA mein jo sale ke purposes dikhaye gaye hain wo higher spread dikhaye gaye hain. Secondly, it does not exclude stamp duty, broker charges and various charges like SEBI charges, GST charges, etc., which comes to around 0.8 to 0.9% to this.
0: भार्गव जी आपका जो शुरू का पोर्शन था दैट पोर्शन इज नॉट क्लियर. यू आर टॉकिंग ऑफ यू नो ब्रोकरेज एंड ऑल दैट प्रोबेबली समथिंग रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी. मैं आपको सलाह दूंगा भार्गव जी, यू कैन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन अगेन नेक्स्ट टाइम बिकॉज द क्वेश्चन वॉजेंट वेरी क्लियर. आई माई हम्बल अपोलॉजीज.
1: दिल्ली से हमारे साथ स्वाभिन जुड़ रहे हैं. स्वाभिन जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया आपने सवाल पूछिए.
5: नमस्कार सर.
0: नमस्कार
5: सर. मैं रेगुलर सुनता हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने आज कॉल किया है और मेरा ही लकी है कि आज कॉल लग गया है.
0: बताइए
5: सर. मैं जैसे आईटीआर भरता हूँ हर साल और मेरी सैलरी 12 लाख रुपए की साल का भरता हूँ
0: जी.
5: अब तो सर टैक्स लगता नहीं है
0: जी.
5: तो क्या मुझे भरना जरूरी है सर?
0: देखिए अगर रिबेट की वजह से, जिसको पहले 87A रिबेट कहते थे, अगर उस वजह से आपका बिलो टैक्स आ रहा है तो आपको भरना चाहिए. जो लोग बिलो एग्जेम्पशन लिमिट हैं उन लोगों के लिए भरने की माफी है. 4 लाख से अगर आपकी कम है न्यू रिजीम में और 2.5 लाख से कम है ओल्ड रिजीम में फिर तो आप नहीं भरेंगे. पर अगर रिबेट की वजह से, क्योंकि आपकी 12 लाख है तो आपको भरना चाहिए और उसको बकायदा नील के रिटर्न आपको फाइल करना चाहिए.
3: नाउ हैव लेट्स हैव अ लुक एट द कमोडिटी प्राइसेस द वीकली बिहेवियर. क्रूड ऑयल, ग्लोबल क्रूड ऑयल prices rose sharply this week after US President Donald Trump said that the memorandum of understanding with Iran was over and that he did not want to engage with Tehran following renewed hostilities. During the week at the Intercontinental Exchange ICE, Brent crude September futures surged 5.4% to settle at $76.01 per barrel, while the West Texas Intermediate WTI crude August futures jumped 3.8% to end at $71.41 per barrel.
1: और शरद जी कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे तमाम कॉल्स पर जितने श्रोताओं जुड़े हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत
0: धन्यवाद. It was my pleasure. Thank you so much. धन्यवाद.
3: एंड बिफोर वी क्लोज अ लुक एट द हेडलाइंस, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज स्नैप 4-week winning streak. Sensex and Nifty decline nearly 0.3%. India and New Zealand elevate ties to strategic partnership set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030. And global crude oil prices jump this week amid renewed hostilities in West Asia. And that's it in this edition of the program. We will be back tomorrow at the same time. Do join us then. Till then, namaskar.
6: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और 5 सेकेंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। गीत मेरे मनमीत की वो महफिल जिसमें हम सुनहरे दौर के उन नगमों को लेकर आपके लिए आते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है और आप उसे बार बार सुनना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं। हिंदी सिनेमा का वो सुनहरा दौर जब कहानियाँ दिल से निकलती थी, संवाद जिंदगी से जुड़े होते थे और धुनें सीधे रूह तक उतर जाया करती थी। आज हम आपको लेकर चलते हैं उसी खूबसूरत जमाने में जहां हर फिल्म अपने साथ एक नई रिवायत और एक नया अंदाज लेकर आती थी। साल था 1954 का, जिसमें एक महान फिल्मकार गुरुदत्त साहब ने दर्शकों को एक बहुत ही यादगार फिल्म दी थी और वो फिल्म थी आर पार। रहस्य और दिलचस्प किरदारों से सजी इस फिल्म में जॉनी वॉकर, श्यामा, शकीला, जगदीप और जगदीश सेट्टी ने अपनी शानदार अदाकारी से इसे यादगार बना दिया था। आर पार की एक और खासियत थी कि इसकी जबान फिल्म के संवादों में कहीं पंजाबी की गर्मजोशी थी तो कहीं उर्दू की नफासत, कहीं बम्बैया बोली की चंचलता और कहीं आम हिंदुस्तानी की सादगी। यही रंग बिरंगी भाषा उस दौर की मुंबई की तहजीब और गंगा जमुनी संस्कृति की एक खूबसूरत झलक पेश करती थी। और जब बात उसके संगीत की हो तो ओपी नैयर की मस्त धुने और मजरूह सुल्तानपुरी साहब के दिलनशी अल्फाज का जिक्र किए बिना ये सफर अधूरा रह जाता है। इन दोनों की जुगलबंदी ने आर पार के गीतों को ऐसा जादू बख्शा कि वे आज भी संगीत प्रेमियों की महफिलों की रौनक बने हुए हैं। उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और गीता दत्त जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मोहम्मद रफी साहब और गीता दत्त जी की आवाजों में नगमा था फिल्म आर पार से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है गीत मेरे मनमीत की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम दौर, जब हर फिल्म महज मनोरंजन नहीं बल्कि जिंदगी का आईना हुआ करती थी, जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि दिलों में बस जाते थे और उनकी गूंज बरसों तक लोगों की यादों में महफूज रहती थी। आज की महफिल में हम कुछ ऐसी ही फिल्म का जिक्र करेंगे और अगली जो फिल्म है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है 1955 की एक बेहद कालजयी फिल्म जिसका नाम था श्री 420, जिसने सपनों, संघर्ष, मोहब्बत और इंसानियत की एक ऐसी दास्तान सुनाई कि वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। इस यादगार फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया था भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर साहब ने। उनके साथ थी सदाबहार अदाकारा नरगिस और आकर्षक व्यक्तित्व की धनी नादिरा, जिन्होंने अपनी अदाकारी से इस कहानी को एक नई ऊंचाई दी। फिल्म का नायक एक पढ़ा लिखा मगर गरीब नौजवान है जो सपनों की नगरी मुंबई में अपनी तकदीर तलाशने आता है। उसकी मासूमियत, उसके ख्वाब और उसकी जद्दोजहद उस दौर के आम इंसान की कहानी बन जाते हैं। यही वजह है कि श्री 420 आज भी उतनी ही ताजगी और अपनापन महसूस कराती है जितना पहले। तो आइए उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने।

पनाड़ी फिल्म के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फिरोज को अब दीजिए इजाजत गीत मेरे मनमीत से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद जयती रहेंगी आपके साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत हैदराबाद भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। अरुणाचल प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री न्यातो दुकाम ने बंदरदेवा स्थित रोगोंगे मेगा फूड पार्क के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने

फूड पार्क के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने दिल्ली के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जन से गण तक नामक नई संग्रहालय आधारित शिक्षण पहल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को भारत के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध दिग्गज पार्श्व गायिका एस जानकी का कल कर्नाटक के मैसूर में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 33 राज्य पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साउथहैम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पानी पे लिखी कहानी। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कहानी घरौंदा। दिल्ली दिल्ली दिल्ली जी, दिल वालों की दिल्ली। दिल्ली हर खासो आम का शहर, गालिब की गजलों का शहर और मंदिर की घंटियों का शहर, मेट्रो में चलती जिंदगियों का शहर, कनॉट प्लेस की शोखी का शहर। दिल्ली जिसकी चौड़ी सड़कें, तंग गलियों, शोर जी, उम्मीदों की दिल्ली, हौसलों की दिल्ली, तीखी चाट की दिल्ली, सत्ता के गलियारों की दिल्ली। और इस सपनों की दिल्ली में मोहन भी अपनी जोरू के साथ रोजगार की तलाश में चला आया। गांव के कई परिवार गांव छोड़कर दिल्ली चले आए थे, करते भी क्या, मुट्ठी भर जमीन हर साल बाढ़ के पानी में डूब जाती। जब से बांध बना था वो जमीन भी जाती रही। जमीन के बदले सरकार ने मुआवजा तो दिया था, पर बैठ कर आखिर कब तक खाते, उसे जिंदगी तो नहीं कट सकती थी ना। धीरे धीरे पूंजी भी खत्म होने लगी। आखिर मोहन ने जी कड़ा किया और अम्मा बाबूजी से दिल्ली जाने की इजाजत ले ली, पर उसकी फुलवा ने तो रो रो कर मानो जी हलकान कर लिया हो।

फुलवा का बलवा उसकी भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहा था। तब अम्मा जी ने जी कड़ा करके फुलवा को मोहन के साथ विदा कर दिया। आखिर इकलौते बेटे को अकेले परदेश कैसे भेज सकती थी। कंधों पर सपनों और उम्मीदों का बोझ लिए वो दिल्ली चला आया था। वो दिन था और आज का दिन। मोहन और फुलवा को गांव की बहुत याद आती थी। कितनी बार सोचते गांव वापस लौट जाएं। अम्मा और बाबूजी की बहुत याद आती थी और घर की टूटी दीवारें, टपकती छत बार बार आंखों के सामने आ जाती। कुछ साल और कमा लेंगे तो अम्मा की मोतियाबिंद का ऑपरेशन और घर की मरम्मत भी करवा लेंगे, ऐसा ही सोचा था मोहन और फुलवा ने। मोहन और फुलवा को यहाँ रहते रहते बरसों बीत गए थे। जीवन में खेती के सिवा कुछ काम ही नहीं किया। अनजान शहर में कोई काम देता भी तो कैसे देता। फिर भी कहते हैं ना, दिल्ली दिल वालों की है। मोहन ने ठेकेदार के हाथ पैर जोड़कर बेलदारी का काम शुरू कर दिया। खेत में पसीना बहाने वाले शरीर आज भरी दोपहरी में सीमेंट की बोरियां उठा रहे थे। अनाज उगाने वाले हाथ आज ईंट उठा रहे थे। शुरू शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई। इस अनजान शहर में अपनी फुलवा को छोड़े तो छोड़े कहां। तब फुलवा ने कहा था।

0: पुलवा, पुलवा के बारे में तो आपको ठीक से बताया ही नहीं। मध्यम कद, गठीला बदन, गेहुआ रंग, तेल लगे बालों के बीच लंबी सी मांग जिसमें पाव भर पीला सिंदूर, माथे पर चवन्नी बराबर गोल बिंदी और हाथ में भर भर की चूड़ियां और कमर में अम्मा की शादी में चढ़ाई चांदी की करघनी चमकती रहती थी। बड़ी कर्मठ और एक बार जो ठान ले तो फिर किसी की नहीं सुनती थी फुलवा। मोहन कुछ समझ पाता उससे पहले ही फुलवा ने छींटदार साड़ी के पल्लू को समेटकर कमर में खोस लिया और मोहन के कमछे को गोल गोल घुमाकर अपने सर पर रखकर ठेकेदार से कहा,
1: ये ठेकेदार बाबू, हम भी काम करब।
0: ठेकेदार ने एक अजीब सी निगाह से फुलवा को देखा। फुलवा एक क्षण को असहज सी हो गई थी और मोहन बिल्कुल फुलवा की ढाल बन के उसके आगे खड़ा हो गया। वो जानता था ना इस तरह के लोगों के बारे में, बस उसकी फुलवा ही कहां सुनती थी किसी की। और वो दिन था और आज का दिन। वर्षों बीत गए थे उन्हें इस अनजान शहर में, जहां कभी कोई इमारत बनती दोनों अपना डेरा डंडा उठाए वहां पहुंच जाते। छोटी सी गृहस्थी थी उनकी, गिनती के चार बर्तन और कपड़े। फुलवा थी तो बड़ी गुणी, वहीं साइट पर पड़े ईंटों को गीली मिट्टी से जोड़कर छोटी सी झोपड़ी बना लेती और मोहन काली पीली पन्नी का जुगाड़ कर छत छवा लेता और ढलाई के लिए आई लकड़ी के पटरों से दरवाजा और फटी साड़ी को तुरपन करके पर्दे बन जाते। बस गृहस्थी बस जाती। फुलवा कहीं भी रहे पर अपने संस्कार धर्म कर्म कभी नहीं भूलती। हर साइड पर झोपड़ी के बाहर तुलसी का चौरा उसके साथ रहता। मुंह अंधेरे उठकर तुलसी माता का चौरा लीपना और सुबह शाम दिया जलाना उसकी आदत में शुमार था। समय पंख लगाए उड़ा जा रहा था। पिंकी और ननकू यहीं पैदा हुए थे। पिंकी दिमाग से बहुत तेज थी और फुलवा की बड़ी इच्छा थी कि दोनों बच्चों को पढ़ाए लिखाए, पर इस बड़े शहर में पेट भरने के लिए पैसा कमा ले वही बहुत था। पिंकी के लिए कॉपी और पेंसिल जुटाना संभव नहीं था, पर फुलवा ने हार नहीं मानी। उसने उसका भी जुगाड़ कर लिया। हारना तो मानो फुलवा ने सीखा ही नहीं था। वैसे भी इंसान अगर परिस्थितियों से हार जाए तो फिर वो इंसान कैसा। फुलवा की वजह से ही मोहन की अम्मा का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो पाया था। मोहन जब भी अपनी परिस्थितियों के आगे झुक जाता, थक जाता, हारने लगता, फुलवा उसकी ढाल बनकर बिल्कुल उसके सामने खड़ी रहती और उसे हौसला देती।

रात को जब शहर रोशनी में नहा जाता तो फुलवा की झोपड़ी भी कुप्पी की रोशनी और चूल्हे के अंगार की रोशनी में दमक उठती। चूल्हे की आग में सिकती रोटियों की गमक से सारी झोपड़ी सौंधी खुशबू से महक उठती थी। दिन भर ईंटें उठाने से चोटिल हुए हाथ आटे की लोई को बड़ी कलाकारी से पीट पीट कर हथेलियों पर बड़ा कर देते। चांद सी गोल गोल रोटियों को थाली में रखते ही पिंकी नमक के डब्बे की ओर भागती और मोहन प्याज को जमीन पर रख अपनी मजबूत हथेलियों से ठप की आवाज से जोर से दो टुकड़े में कर देता। कुल जमा 7 रोटियां ही बन पाती, 2 मोहन की, 2 फुलवा की, 2 पिंकी की और 1 ननकू की। और इन गिनती की रोटियों के साथ 7 तक की गिनती भी पिंकी को आ गई। मोहन चुपचाप सिर झुकाए माँ बेटी की बहस को देखता रहता और खाना खाता रहता। जानता था रोज रोटी 7 ही बनती है, पर फुलवा पिंकी की बात पर मुस्कुरा देती। वो पिंकी का मन रखने के लिए रोज ऐसा ही कहती और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था।

पिंकी के सवाल को सुन फुलवा की आंखें भीग गईं। आंचल के कोर से आंसुओं को पोंछती हुई फुलवा की नजर मोहन से टकरा गई। मोहन समझता था उसकी आंखों में आंसुओं का कारण, पर वो भी लाचार था। कभी कभी सोचता था ऐसे सपने देखने से क्या फायदा जो पूरे ना हो सके। सोचा था गांव का मकान पक्का करवा लेंगे, कम से कम बुढ़ापे के लिए एक पक्का घर तो हो ही जाएगा। अम्मा भी कितनी बार कह चुकी थी घर जगह जगह से टपकता है, जाड़े और बारिश में बहुत दिक्कत होती है, पर बस सुनकर रह जाता, कुछ कर ही नहीं पाता। और यहाँ खाने का ठिकाना नहीं था, पक्के घर की कैसे सोच सकता था वो। अचानक से झोपड़ी में सन्नाटा सा छा गया, रात गहराती जा रही थी। मोहन चुपचाप लेटा हुआ था, आज मोहन को फिर काम नहीं मिला था। फुलवा ने आज फिर बच्चों को आटा घोल कर पिलाया था। मोहन चुपचाप था, भीतर एक गहरा शोर भरा हुआ था। मोहन ने लोटा भर पानी पीकर भूख की आग को शांत करने की बहुत कोशिश की। वो सोने की कोशिश कर रहा था, पर भूखे पेट नींद आती भी कैसे। नींद ना जाने कहां उसका हाथ छुड़ाकर दूर कहीं छिप गई थी। बिस्तर मानो चुप सा रहा था, वैसे भी बिस्तर के नाम पर था ही क्या। फुलवा ने सीमेंट की प्लास्टिक की बोरियों को जोड़ जोड़ कर नीचे बिछा दिया था और अपनी फटी पुरानी साड़ियों को जोड़कर गठरी सी बनाई थी, जिसे वो बिस्तर के रूप में प्रयोग लाती। और पिंकी, ननकू और मोहन के फटे पुराने कपड़ों को झोले में भर कर तकिया बना लिया था। आज ना जाने क्यों मोहन को गांव की बहुत याद आ रही थी। वो पीपल का पेड़, खेत खलियान, बड़े हनुमान जी का मंदिर, पोखरा और अम्मा के हाथ की बाजरे की रोटी। अम्मा के हाथ की बाजरे की रोटी और लहसुन मिर्च की चटनी खाए हुए कितने दिन हो गए थे। चूल्हे की आग की तपिश में सिकती सौंधी सौंधी रोटी की सुगंध भूख को और बढ़ा देती। अम्मा बाबूजी को याद कर मोहन का मन भारी हो गया था। घर को पक्का कराने का सपना सपना ही बनता जा रहा था। कभी कभी मोहन सोचता, अम्मा से जो वादा किया है क्या वो कभी पूरा कर पाएगा। पता नहीं कब उसकी ये इच्छा पूरी होगी। शाम से ही मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और रह रह कर बिजली चमक रही थी।

फुलवा मोहन के नजदीक सरक आई। एक ही तकिया था जिस पर पिंकी सो रही थी। मोहन ने धीरे से अपनी बाहें फैला दी और फुलवा ने उसे तकिया समझकर उस पर अपना सर टिका दिया। उनका ये प्यार वाकई में बहुत प्यारा था।

0: मोहन की आंखें लगातार आसमान को घूर रही थी, मानो मन में घुमड़ते सवालों का जवाब पूछ रही हो। फुलवा ने एक गहरी सांस ली। काश हमारा भी घर होता। फुलवा की आंखों में आंसू आ गए, मोहन की बाहें भी भीग गईं। आज सिर्फ उनकी आंखें ही नहीं, उनका दिल भी रो रहा था। कैसी किस्मत लेकर पैदा हुए हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक छत ही तो चाहिए थी, और क्या, और तो कुछ भी नहीं।
1: एक बात बतावा, का हमार आपन मकान नहीं बन सकत? हाँ,
2: पैसा कहाँ से लाएं महवा?
1: गाढ़े बगत के लिए तू जो थोड़ा पैसा बचा के रखल रहू, और हमार अम्मा, तुहार अम्मा जो बिहाए में हमके चांदी के हसली और करधन चढ़ायल रही, ओसे काम ना चली।
0: फुलवा की आंखों में उम्मीद के तारे टमटमाने लगे, और मोहन फुलवा के मासूम चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया।
2: धत पगली, इतने पैसा से का होइल बा? मकान बनाई खातिर बहुते पैसा चाहिए ना?
1: हमार तो किस्मत ही खराब बा।
0: मोहन ने गहरी सांस ली। फुलवा ने निराशा से अपनी गर्दन झुका दी। उसके चेहरे पर मानो दर्द उभर आया। धीरे धीरे वो दर्द पूरी झोपड़ी में पसर गया, और झोपड़ी में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। तभी आसमान से बारिश की मोटी मोटी बूंदे गिरने लगी, मानो मोहन के दुख से दुखी होकर उसकी भी आंखें भीग गई हों। मोहन और फुलवा हड़बड़ा कर उठ गए। बच्चे नींद में गुनगुनाने लगे। बारिश तेज होने लगी। धीरे धीरे झोपड़ी में पानी भरने लगा। मोहन और फुलवा बेचारगी से एक दूसरे को देख रहे थे। आखिर इतनी रात को वो कहाँ जाते? फुलवा ने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा, और सामने, बिल्कुल सामने चाय की टपरी थी, वहां पर नीचे आकर खड़ी हो गई, और मोहन जल्दी जल्दी झोपड़ी का सामान समेटने लगा। मोहन सोच रहा था, भगवान इतना निर्दयी, इतना निर्मोही कैसे हो सकता है? उसे उनकी दुर्दशा पर दया नहीं आती? रात भर बारिश होती रही। मोहन और फुलवा बच्चों के साथ पूरी रात वहीं टपरी के नीचे खड़े रहे। चारों तरफ पानी ही पानी। मोहन की झोपड़ी में भी घुटनों तक पानी घुस गया था। पानी की तेज धार और हवा से काली पन्नी पूरी तरह से फट चुकी थी। मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी जलमग्न हो गई थी। तुलसी मैया पानी की तेज धार से एक ओर झुक सी गई थी, और फुलवा

शिवा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। कैसे तिनका तिनका जोड़कर गृहस्थी बनाई थी। पिंकी भी बिलबिला गई, भूख से नहीं दर्द से। उसके सारे सीप और पत्थर उस पानी में कहीं खो गए थे। मोहन समझ नहीं पा रहा था इस परदेश में अपने बीवी बच्चों को लेकर कहां जाए।

0: रूपा ने निराशा से मोहन की ओर देखा, जिसे पूछना चाह रही हो अब क्या होगा। तभी मोहन को कुछ ख्याल आया। मोहन की आंखों में सवाल तैर रहे थे। मोहन को कुछ ख्याल आया।
1: फुलवा तनी फोनवा ला के देलबा, देखी किशनवा कहाँ भाई, हो सकत है ओकरा पास रहन के ठिकान मिल जाए, किशनवा का नंबर तनी दे दे।
0: मोहन की आंखों में सवाल तैर रहे थे। फुलवा ने ननकू को गोदी से नीचे उतारा और कपड़ों की गठरी से एक डायरी निकालकर मोहन के हाथों में रख दी।
1: याद बा का
2: तो नंबर मिलावा हम बोलत है 9415।
1: हेलो हेलो किशन।
3: राम राम भैया, सब ठीक है ना? ई वक्त फोन कैसे करें? बाल बच्चा और भौजी सब ठीक है ना?
1: ओहो किशन, यहाँ बड़ा तेज पानी बरसत बाहो, सारी रात बरसा हो, बड़े पानी झोपड़िया में घुस गई, तो हर पास जगह हो तो हमरा अपन परिवार के ले आई ना। हमारा समझ में ना आवत गई कहाँ जाएंगे ये घड़ी लेकर के हो।
3: हम तो गांव आए हैं, वहाँ होते तो तुहार मदद जरूर करत।
1: गांव गांव चल गई, घर में सब ठीक बनो?
3: हमार मेहरारू का नवा महीना चल रहा है, अस्पताल भर्ती कराए हैं और प्रधान जी भी फोन करे रहे, आवास का पैसा आ गई है, तुहार खाते में भी देखा पैसा आयल होई, तो के भी दस्तखत करे के जाए के पड़ी।
1: का कहो हो सच में?
2: सच बोलत है।
3: हाँ बिल्कुल सच। मोहन भैया, हम गरीबन का सहारा तो भगवान ही है, हम तो कभी सोचले भी ना रही कि हम गांव में पक्का घर बनवा पाइब, पर अब आवास योजना की मदद से हमरो सर पर भी छत हुई, बारिश से गर्मी से ठंड से बचाव हुई। भैया तू भी जल्दी से जल्दी गांव आकर दस्तखत करा और आवास का पैसा से पक्का घर बनवा ला।
1: जना तो फुलवा, हमारा आवास के सरकार पैसा दे बोले।
2: सची में
1: किशनवा के फोन आए बोले ना, आवास के पैसा आ गए बोले, हम घर चल।
2: का सचमुच आवास का पैसा हमें मिली? हमरा तो अपन कान पर विश्वास ही न हो रहा बा ननगू के बापू, कहीं सब एगो सपना तो ना बा कि जो हाथ अब तक दूसरे के घर बनावत रही वो अब अपन घर बनाई। अब पिंकी और ननकू भी ठंड में और बरसात में बुखार से बचल रही और हम लोग भी अपन घर में इज्जत के जिंदगी जी। अब अपन घर, अपन पक्का घर।
0: मोहन को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था, वो कागज भरकर तो मानो भूल ही गया था और आज आज उसका सपना पूरा होने जा रहा था, वो भी पक्के मकान का। अब वो भी पक्के मकान में रह पाएगा और अपने अम्मा के सपनों को पूरा कर पाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, ये आंसू खुशी के आंसू थे।
4: पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा कि हियारा में उठत हिलो, अरे पुरवा के झोंकवा में आई

0: छोटा सा घर, उनका अपना घर।
1: तो दोस्तों ये थी कहानी घरौंदा, और इसी के साथ कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी को समेटने की इजाजत दीजिए। रश्मि कुकरेती आपको कहती है नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत हैदराबाद भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। अरुणाचल प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री न्यातो दुकाम ने बंदर देवा स्थित रोगोंगे मेगा फूड पार्क के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने फूड पार्क के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने दिल्ली के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जन से गण तक नामक नई संग्रहालय आधारित शिक्षण पहल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को भारत के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध दिग्गज पार्श्व गायिका एस जानकी का कल कर्नाटक के मैसूर में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 33 राज्य पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साउथहैम्पटन में खेले गए 5

कर अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 257 रन बनाए और भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। इंग्लैंड के जॉस बटलर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है आराधना।

जब संसार निद्रा में डूब जाता है, आकाश अपना प्राचीन ग्रंथ खोलता है। उसके पहले पृष्ठ पर बादलों की चलती हुई लिपि अंकित होती है, दूसरे पृष्ठ पर सितारों की उजली वर्णमाला। एक लिखता है, बहना ही जीवन है, दूसरा जोड़ देता है, टिके रहना भी उतना ही आवश्यक है। दोनों मिलकर समय का एक ऐसा शास्त्र रचते हैं जिसे किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता, पर हर संवेदनशील हृदय कभी न कभी पढ़ी लेता है। रात्रि उस ग्रंथ की संरक्षिका है, वह किसी से शुल्क नहीं लेती, किसी का नाम नहीं पूछती, केवल इतना चाहती है जो ऊपर देखे वो भीतर भी देखना सीख जाए। इसलिए जब अगली बार बादल सितारों के बीच से गुजरे, उन्हें केवल बदलती आकृतियों की तरह मत देखना, वे जल और ज्योति का शाश्वत संतुलन है। इसी संतुलन पर ऋतुएं टिकी हैं, इसी पर यात्राएं, इसी पर स्वप्न और इसी पर मनुष्य का वो विश्वास जो हर नए प्रभात से पहले रात्रि के आकाश में जन्म लेता है। आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और अगला गीत फिल्म का नाम है जीने की राह। आवाज है आशा भोसले, उषा मंगेशकर और हेमलता की।

रजनी ने आज क्षितिज से क्षितिज तक नील पट बिछा दिया था। उस पर बादलों ने रूप बदलते हुए अनगिन आख्यान रचे और सितारों ने बिना किसी शोर के उन आख्यानों में अर्थ भर दिए। एक बादल दूर समुद्र की यात्रा से लौटा था। उसकी देह में लहरों का नमक था, नदियों की स्मृतियां थीं, पहाड़ों की थकन थी, धान की बालियों की प्रतीक्षा थी। एक सितारा करोड़ों वर्षों से उसी दिशा में टंगा था, किंतु उसका प्रकाश हर रात नया प्रतीत होता था। वो जानता था स्थिर रहकर भी नवीन बना जा सकता है। रात ने दोनों को एक ही आकाश में स्थान दिया। तभी संसार ने समझा, परिवर्तन और स्थिरता प्रतिद्वंद्वी नहीं, एक दूसरे की पूरक धाराएं हैं। धरती के वृक्ष ऊपर देख मुस्कुराए, मानो कह रहे हों, जो ऊपर इतना विशाल होकर भी एक दूसरे को जगह दे सकते हैं, उन्हीं से संतुलन का पाठ सीखना चाहिए। जब प्रातः की आभा निकली, ना कोई विजेता था ना कोई पराजित, केवल आकाश था जो सबको समेट लेने के कारण और भी विराट हो गया था। और अगला गीत तलत अजीज की आवाज में, फिल्म उमराव जान से।

पहला स्वर फूटे, जैसे नीरव घाटी में दूर कहीं निर्जर का संगीत छूटे। आना आना वैसे जैसे बीज के भीतर हरित स्वप्न आकार संजोते हैं, जैसे धरती के अंतर में अदृश्य अंकुर सांस पिरोते हैं। आना आना वैसे जैसे दीपक की लौ तेल से अपना नाता जोड़ती है, जैसे चंदन की गंध स्पर्श बिना भी मन मोड़ती है। मैं प्रतीक्षा को विलाप नहीं बनने दूंगी, विश्वास की डोरी किसी संशय पर न

रेशमी डोरी अचानक मत तोड़ देना। यदि जीवन असंख्य दायित्वों के भार से भर जाए तो स्नेह का एक अक्षर मेरे हिस्से छोड़ देना। आना वैसे जैसे नदी अपने सागर का पता रखती है, जैसे नव हर संध्या पक्षियों को घर देता है।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है मधुमती।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, साथ हूं मैं जयती। और अगला गीत फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है, आवाज है मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि अब जो जिस गीत के साथ अभी हम आपको छोड़े जा रहे हैं, उस फिल्म का नाम है हमजोली, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। साथ ही हम आपको ये भी याद दिला दें कि हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर, कार्यक्रम होगा रात सुरमई। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी हैं, वैल्यूज भी हैं और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत हैदराबाद भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। अरुणाचल प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री न्यातो दुकाम ने बंदरदेवा स्थित रोंगोगे मेगा फूड पार्क के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने फूड पार्क के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निरीक्षण भी किया। वेनेजुएला में 24 जून को आए भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,333 हो गई। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रभावित लोगों को आवास उपलब्ध कराने का काम अगले सप्ताह से शुरू होगा। भूकंप के कारण लगभग 17,000 लोग बेघर हो गए हैं। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में से 315 लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इस आपदा में 16,740 लोग घायल हुए, जबकि 6,462 लोगों को बचाया गया है। चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपनी ही देश की करोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ मुचोवा विंबलडन महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली लगातार 4 वर्षों में तीसरी चेक खिलाड़ी बन गई हैं। उनसे पहले मार्केटा वोद्रोसोवा ने 2023 और बारबोरा क्रेजिकोवा ने 2024 में यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती थी। साउथम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है बॉबी, आवाज है शैलेंद्र सिंह की।

हर रात एक ऐसा समय आता है जब संसार की गति मंथर पड़ जाती है और केवल आकाश जागता है। उसी बेला में चांद अपनी उजली दृष्टि से धरती पर बिखरे असंख्य जीवनों को देखता है। कोई घर लौट रहा होता है, कोई स्वप्न बुन रहा होता है, कोई उत्तर खोज रहा होता है और कोई स्वयं से मिलने की प्रतीक्षा में होता है। मेरा मन भी उस रात किसी प्रश्न का यात्री था। उसने चांद से कहा, तुम्हारी पूर्णता का रहस्य क्या है? चांद ने उत्तर नहीं दिया। वो प्रतिदिन घटता बढ़ता रहा और उसी परिवर्तन ने मन को समझा दिया, पूर्ण वही है जो परिवर्तन से नहीं डरता, रात्रि की निशब्द नहीं। उसकी गहन व्यापकता में इतना सत्य इतना उज्जवल था कि किसी शब्द की आवश्यकता ही नहीं रही। तब से चांद, जब भी चांद निकलता है, मन उत्तर नहीं खोजता, केवल सीखता है कि अधूरापन भी जीवन का एक सुंदर अध्याय है।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। रात सुरमई में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है त्रिशूल, आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मन का पंछी कभी किसी वन में नहीं रहता, उसका बसेरा दृश्य से अधिक अनुभूति में होता है। वो ऋतुओं की भाषा समझता है, पत्तों के बदलते रंग पड़ता है, पहाड़ों की नीरव नहीं उनकी गंभीर मुद्रा से धैर्य का अर्थ ग्रहण करता है और नदियों से सीखता है रुकना नहीं पर सबको स्पर्श करते हुए आगे बढ़ना। एक दिन उसने आकाश से कहा, मुझे ऊंचाई नहीं चाहिए, मुझे दृष्टि चाहिए। आकाश प्रसन्न हुआ। उसने अपनी अनंतता का एक छोटा सा अंश उस पंछी की आंखों में भर दिया। अब वह किसी शाखा को देखकर केवल पत्तियां नहीं गिनता, वो समझ लेता है कितनी ऋतुओं ने मिलकर उस वृक्ष को वृक्ष बनाया होगा। उसकी उड़ान अब दूरी नहीं नापती, वह अर्थ खोजती है। जो अर्थ तक पहुंच जाए उसे दिशाओं का अभिमान नहीं रहता। मन का पंछी उस दिन पहली बार सचमुच उड़ना सीख गया। मन का पंछी उस दिन पहली बार सचमुच उड़ना सीख गया। मन का पंछी कभी किसी वन में नहीं रहता, उसका बस

तेरा दृश्य से अधिक अनुभूति में होता है। अगला गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में, फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

रात्रि का विस्तार किसी महासागर से कम नहीं था। उसके बीच चांद एक शांत दीप की तरह अपनी दिशा में बढ़ता रहा। मैंने मन को देखा, वो कभी स्मृतियों के तट पर बैठ जाता, कभी कल्पनाओं की नाव बना लेता, कभी भविष्य के क्षितिज तक दौड़ पड़ता। चांद उसे रोकता नहीं था, वो केवल साथ चलता था, मानो कह रहा हो, यात्रा तुम्हारी है, मैं केवल मार्ग का साक्षी हूं। मन ने पहली बार अपने ही भीतर उतरना स्वीकार किया। वहां न कोई पराजय थी, ना कोई विजय, केवल अनुभवों की परतें थीं जिन्होंने उसे आज का स्वरूप दिया था। रात्रि धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, चांद अपनी धवल छवि बिखेरता रहा और मन समझ गया, जो स्वयं के अंतरिक्ष को पहचान लेता है, उसे बाहरी आकाश केवल सौंदर्य नहीं, जीवन का शाश्वत संकेत भी प्रतीत होने लगता है। उस रात चांद आकाश में था, पर उसके वास्तविक उदय मन के भीतर हुआ था। अगला गीत उदित नारायण की आवाज में, फिल्म का नाम है डर।

और अब वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, पर चलते चलते याद दिला दें आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अभी जिस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, फिल्म का नाम है जीना मरना तेरे संग, आवाज है कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की। तो मुझे दीजिए अनुमति, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।

0: हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत हैदराबाद भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। वेनेजुएला में 24 जून को आए 2 भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,333 हो गई। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रभावित लोगों को आवास उपलब्ध कराने का काम अगले सप्ताह से शुरू होगा। भूकंप के कारण लगभग 17,000 लोग बेघर हो गए। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में से 315 लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इस आपदा में 16,740 लोग घायल हुए जबकि 6,462 लोगों को बचाया जा सका। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने जकार्ता में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 19 पुरुष वर्ग में 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आदित्य ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में फिलीपींस के बरुइस एफ्रेम जॉन को 5-0 से हराया, जबकि 60 किलोग्राम में सिकंदर ने ताजिकिस्तान के शरीफ खोन नूरालियेव को 4-1 से शिकस्त दी। साउथहैम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड के जॉस बटलर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की करोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ मुचोवा विंबलडन महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली लगातार 4 वर्षों में तीसरी चेक खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिल की बातें, अनकही बातें और सुरों में घुली हुई मीठी बातें। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके दोस्त और आपकी हमसफर रूपा धवन। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं इस वक्त यानी 3:11:40 पर अपना पसंदीदा शो हमराही। आज हमराही के सफर में हम और आप मिलकर करेंगे ढेर सारी बातें और सुनेंगे वो सदाबहार युगल गीत जिनमें बातें शब्द ही मोहब्बत की धड़कन बन गया। चलिए इस खूबसूरत से सफर का आगाज करते हैं इस बेहद ही हसीन और चुलबुले नगमे के साथ। फिल्म है बात एक रात की, स्वर रफी जी और आशा जी का।
1: जो इजाजत हो तो एक बात कहूं, जो इजाजत

फिल्म उमर कैद से अभी ये गीत सुना आपने, मुकेश साहब और सुमन कल्याणपुर के स्वर में। क्या बात है, इतना खूबसूरत गीत सचमुच। और ये पुराने गीतों में जो जादू है ना, बातों का जो सलीका था, वो इन गीतों में, और वो इन गीतों को और भी खास बना देता है। सुनते हैं एक और ऐसा ही गीत खूबसूरत सा, फिल्म 9-2-11 से, किशोर साहब और आशा जी की आवाज़ में।

दोस्तों, पुराने दौर के गीतकारों ने बात शब्द को कितने अलग अलग रंगों में पिरोया है। कभी प्यार की शुरुआत में होने वाली मीठी बातें, तो कभी सावन की रातों में होने वाली अधूरी बातें। जब लता दीदी और किशोरदा एक साथ सुर मिलाते थे तो ऐसा लगता था मानो दो हमराही किसी मखमली रास्ते पर चलते हुए एक दूसरे से सुख दुख को बांट रहे हों। आइए बातों की इस कारवां को एक ऐसे गाने की तरफ ले चलते हैं जो रिमझिम बारिश में दो दिलों की बातचीत को अमर कर गया। सुनते हैं एक और लता जी और किशोर साहब की आवाज में यह खूबसूरत सा गीत अजनबी फिल्म से।

0: दोस्तों किसी ने खूब कहा है, जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो संगीत बात करता है। लेकिन जरा सोचिए, जब संगीत और शब्द दोनों मिलकर सिर्फ और सिर्फ बातों के हुस्न को बयां करें तो वो शाम कितनी हसीन हो जाती है। पुराने दौर के युगल गीतों की तो बुनियाद ही बातों पर टिकी थी, कभी गीला शिकवा, कभी मनुहार, तो कभी चुपके से दिल का हाल कह जाना।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। समय हुआ है 3:32 और 46 सेकंड। आप हैं रूपा के साथ हमराही के कार्यक्रम में। तो जनाब, हम बात कर रहे थे फिल्मों में बातों के ऊपर आधारित गीतों की, जिसमें दिल के गिले शिकवे, सारे दिल का हाल शब्दों को बातों के जरिए हुस्न का बयां करना। पुराने दौर के युगल गीतों की तो बुनियाद की बातों पर ही टिकी होती थी, कभी गीला शिकवा, कभी मनोहार, तो कभी चुपके से दिल का हाल कह जाना, जैसे कि इस गीत से जाहिर होता है।
1: अरे
2: चुपके से दिल दे दे
1: नहीं ते
2: नहीं ते

क्या बात है, सचमुच पुराने गानों में बातों का जो सलीका था वो इन गीतों को और भी खास बना देता था। सुनते हैं एक ऐसा ही गीत, लेकिन जिसमें बातें नहीं अपने दिल के भावों का इजहार किया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहा है दिल ने दिल से। बातों बातों फिल्म का ये गीत अमित कुमार और आशा जी के स्वर में आप सभी के लिए।

जी हाँ, मीठी मीठी बातें, और वो भी दिल के साथ। ना किसी ने कुछ बोला, ना किसी ने कुछ सुना, लेकिन सुनकर दिल बाग बाग हो गया। वैसे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपने ही चहेते शो हमराही पर, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और साथ हूँ मैं आपके रूपा धवन। तो जनाब, एक बात तो माननी ही पड़ेगी, दिल में जो बातें होती हैं ना, वो मोहब्बत में अक्सर हुस्न के साथ बयां हो जाती है, जैसे कि इस गीत के साथ हम आपको सुनवा रहे हैं। ये गीत फिल्म महल से किशोर कुमार साहब और आशा जी के स्वर में।

तो जनाब, जोशीला फिल्म का अभी ये नगमा आपने सुना। और बात करें अगर आँखों की, तो प्यार में सबसे खूबसूरत बातें वो हैं जो जुबा से नहीं बल्कि आँखों से की जाती है। ये बात तो हमें माननी ही पड़ेगी। अच्छा, आज बातों के सिलसिले में आप सोचिए कि आपकी ऐसी कौन सी बात है जो आज भी आपके दिल के सबसे करीब है, या वो कौन सा पुराना युगल गीत है जो आपको किसी खास इंसान की बातों की याद दिलाता है।

जी हाँ, आज हमने बात की हमराही में उन गीतों की जिनमें बातों का जिक्र था। बातों का क्या है जनाब, बातें तो अंतहीन हैं। अभी आपने बेहद ही खूबसूरत सा नगमा सुना, छोटी सी बात फिल्म से यशुदास और आशा ताई की आवाज़ में। जैसे कि बातें तो अंतहीन हैं, हमने बात की अच्छे गीतों और आप जैसे प्यारे हमराही साथ हों तो रातें अक्सर छोटी पड़ जाती हैं, मगर बातें ख़त्म नहीं होती। जैसे कि अभी समय हुआ है 3:54 और 10 सेकेंड, आप हैं हमराही में रूपा धवन के साथ और वक्त का तकाजा है और अब आज के इस सफ़र को यहीं थामने का समय आ गया है। तो हमने युगल गीतों के ज़रिए दिल की बातें कही आज हमराही में, कुछ आपने सुनी कुछ मैंने कही। कल फिर ठीक इसी वक्त मिलेंगे, लेकिन जुड़े रहिए इसी तरह हमारे साथ। और कल नहीं, अभी तो आपके साथ 6 बजे तक हूँ मैं। जी हाँ, सुबह के 6 बजे तक अरुणिमा और भोर सुहानी भी आपके साथ लेकर हाजिर रहूँगी। फिलहाल अपनी बातों में मिठास रखिए, अपनों का साथ रखिए। चलते चलते छोड़ जाती हूँ आपको इस बेहद सुरीले नगमे के साथ, जिसे हमने दिया है फिल्म महल से।

कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसर

0: साथ है।
1: पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध दिग्गज पार्श्व गायिका एस जानकी का कल कर्नाटक के मैसूर में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 33 राज्य पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने प्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस जानकी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज ने भारतीय संगीत को समृद्ध किया और कई पीढ़ियों के असंख्य लोगों के दिल को छुआ। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के कल वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरल से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने वियतनाम में हुई पर्यटक नौका दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड के जॉस बटलर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की करोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महबश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a

कहते हैं कि आपके जीवन में अच्छी संगति और अच्छी किताबें ऐसी अनमोल संपत्ति होती हैं जो हमेशा ही आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। ठीक इसी तरह हम भी आगे बढ़ रहे हैं और आपका मनोरंजन भी कर रहे हैं साथ ही साथ। वक्त हुआ है 4:11 और 24 सेकंड। आप हैं अरुणिमा कार्यक्रम में अपने ही दोस्त रूपा के साथ। बहुत प्यार भरा नमस्कार आप सभी को।

तो जनाब, हमारे जो मन के विचार हैं ना, वही हमारे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। सकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं और नकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हमारे जीने का अंदाज बदल सकती है सकारात्मक सोच। अपनों को, दोस्तों को और खुद को उनकी अच्छी अच्छी छोटी छोटी सी बातों के लिए शाबाशी दीजिए। दोस्तों, डांट डपट तो सिर्फ डर पैदा करती है, लेकिन सच्ची तारीफ और हौसले से पैदा होती है हर मुश्किल को जीतने की एक नई उम्मीद। और इस उम्मीद को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे दोस्त।

बातें तो अच्छी भी होती हैं और बुरी भी, और दोस्तों में भी कभी कभी ऐसी बात हो ही जाती है कि दोस्ती छोड़कर वो दुश्मनी करने लगते हैं। लेकिन ये दुश्मनी थोड़ी देर की बात होती है, जब एक दूसरे से मान मनोहार करके मना लेते हैं एक दूसरे को, तो फिर से वही दोस्ती पक्की हो जाती है। जी हाँ, और जैसे आपकी और हमारी दोस्ती भी बनी हुई है, बरकरार है, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। वक्त हुआ है 4:22 और 20 सेकंड, आप हैं रूपा धवन के साथ अरुणिमा कार्यक्रम में। तो सुनते हैं एक और बेहद खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, लता मंगेशकर जी और किशोर साहब के स्वर में।

गुण अवगुण सभी में होते हैं, तो दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि स्वयं को ऊंचा उठाने में समय लगाइए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद नहीं करिए बल्कि दीपक जलाने में समय लगाइए। अंधा कानून फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए।

किस्मत और मेहनत दोनों में एक फर्क होता है। किस्मत केवल वही दिलाती है जो लिखा होता है, लेकिन मेहनत वो भी दिला देती है जो किस्मत में नहीं लिखा होता। चलते चलते फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए लता जी के स्वर में।

लफ्ज ही होते हैं इंसान का आईना, लफ्ज ही होते हैं इंसान का आईना, शक्ल का क्या है वो तो उम्र और हालात के साथ अक्सर बदल जाती है।

अभी कांच हूँ इसलिए सारी दुनिया को चुभता हूँ, अभी कांच हूँ इसलिए सारी दुनिया को चुभता हूँ, जब आईना बन जाऊंगा उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो दुनिया तभी याद करती है जब आपकी ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरत नहीं, आप दूसरों की कमी बनिए। जी हाँ, जब आप कमी बनेंगे ना दूसरों की, जब आपकी कमी जो है वो दूसरों को खलेगी ना, तो आपको बरबस ही याद कर लिया जाएगा। पर फिर भी हम तो यही कहेंगे कि दूसरों की भलाई में खुद को इतना खो दीजिए कि आपका नाम हर किसी शख्स की जबां पर हमेशा रहे, हमेशा आपको याद करें, और इतना याद करें कि उनकी जो आंखें हैं ना वो सोना ही भूल जाएं।

तो जनाब, खुद को समय जरूर दें। आपकी पहली जरूरत खुद आप हैं, क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। और समय हुआ है फिलहाल हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 4:54 और 22 सेकंड। आप हैं रूपा धवन के साथ, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अरुणिमा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित पाँच

9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरि को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में आयोजित पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे और जन भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बनाने का आह्वान करेंगे। केंद्रीय मंत्री वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भाजपा नेता ने मांग की है कि श्री उमर अब्दुल्ला या तो अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करे या फिर अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के कल वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वियतनाम में हुई पर्यटक नौका दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 257 रन बनाए और भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा। इंग्लैंड के टॉस बटलर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उधर चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की करोलिना मुजोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था। इस ऐतिहासिक जीत के साथ मुजोवा विंबलडन महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली लगातार 4 वर्षों में तीसरी चेक खिलाड़ी बन गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और लीजिए जनाब, धीरे धीरे सूरज ने अपनी किरणों को साथ में सूरज के रथ पर चढ़कर सूरज आ गया है। अपनी किरणों को धीरे धीरे आसमान से धरती की तरफ बिखेरता हुआ और उसकी रोशनी से प्रकाश

सुरक्षित होता ये सारा जहां। भोर सुहानी में आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। और जनाब, कहते हैं ना, जब इंसान चारों तरफ से थक जाता है या जब कोई उसकी तकलीफ को नहीं समझ पाता, तब यही एक विश्वास सबसे बड़ा सहारा बनता है। कौन सा विश्वास? कोई देखे या ना देखे, मेरा ईश्वर सब देख रहा है और सब जानता है। वो हमारी खामोशी भी सुनता है और हमारे बिना कहे भी हमारी प्रार्थनाएं जानता है।